आपके साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल

खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शायला और बिंदिया रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और

0: महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन

रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास किया था। के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरु में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरु के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हर आंगन
1: दोस्तों, कहते हैं मौसम कुदरत का आईना है जो हर पल अपना रंग बदलता है। कभी धूप की गर्मी और कभी बारिश की ठंडक, कभी सर्द हवा का एहसास। और मौसम सिर्फ बाहर से नहीं बदलता बल्कि हमारे मन और सेहत पर भी असर डालता है। इसीलिए हर मौसम का स्वागत कीजिए और हम भी आपका स्वागत करते हैं। तो आज के कार्यक्रम घर आंगन के इस प्यारे से शो में मैं हूँ आपकी दोस्त रहो सिमरन कौर,
2: और स्वीकार कीजिए रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और आप हमें सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर।
2: जी, और सिमरन काली घटाएं छा गई हैं और बारिश बरस रही है, जगह जगह बारिश हो रही है और मन भी खिल उठा है। लेकिन हम तो ये कहेंगे जहां भी हो संतुलित बारिश हो, और बारिश के मौसम में कुछ छोटी छोटी सावधानियां बहुत काम आती हैं। और वही जो है हमारा सवाल है आज हमारे श्रोताओं से कि बारिश के मौसम में आप कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं छोटी छोटी सी। तो ये इस सवाल का जवाब हमें लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।

0: और पारिवारिक जानकारी समझे और जहां तक संभव हो जानकारी की पुष्टि भी करे।
1: और इसके अलावा दूसरी बात ये कि अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें और शुरुआत में अपना घर का पता, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। ऑनलाइन सुरक्षा हमेशा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: जी, और अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत पड़े तो फिर ऐसा ना करें, कुछ बातचीत जरूर करें, एक दूसरे को समय दें और वीडियो कॉल या व्यक्तिगत मुलाकात से पहले थोड़ी सावधानी बरतें। पहली मुलाकात हमेशा किसी सार्वजनिक स्थल पर करें या परिवार या करीबी लोगों को इसकी जानकारी अवश्य दें।
1: और इसके अलावा अगर वीडियो कॉल का व्यक्तिगत मुलाकात से पहले की बात जो आपने की वो भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो कॉल में भी ये ठीक नहीं रहता कि हम एक दूसरे के साथ जब बातें करते
0: सावधानी
1: हैं
0: हमें रखनी
1: सावधानी बरतनी
0: चाहिए।
1: चाहिए
0: जी
1: हमेशा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी आर्थिक लेन देन से बचें। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से पैसों की मांग करता है तो एकदम होशियार हो जाएं, और धोखाधड़ी का संकेत ये हो सकता है।
0: देखिए, अब समय बदल रहा है दोस्तों, तो मैट्रिमोनियल साइट्स अच्छे रिश्ते ढूंढने का एक बेहतरीन माध्यम हो सकती है, लेकिन समझदारी और सावधानी के साथ। तो जो एक सही रिश्ता जो है वो विश्वास से बनता है, सम्मान से बनता है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो पारदर्शिता पर आधारित रहता है। तो सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लीजिए और सुरक्षित रहिए।
1: बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत, फिल्म थी वक्त की दीवार और गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। रश्मि जी, एक मेल आया है।
1: जी बोल बताएं।
0: ये आया है चंद्र विहार से, रीना गुप्ता, नीना गुप्ता और रितिन गुप्ता का।
1: जी
0: इन्होंने लिखा है कि बारिश के मौसम में खास तौर पर इस घर का निरीक्षण जरूर करते रहें, क्योंकि कहीं से अगर पानी टपक रहा हो तो तुरंत उसे रोकने की व्यवस्था करें और घर के आसपास नजर बनाए रखें कहीं पानी रुका हुआ तो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी का खतरा है।
1: जी बिल्कुल, सावधान रहना चाहिए और घर में हम रह रहे हैं तो उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। एक और मेल मेरे पास आया है, आप हैं राघव दिलशाद गार्डन से, आप कह रहे हैं कि जब भी बारिश का समय हो तो फिर ऐसे समय पे बिजली भी कड़कती है, तो बिजली कड़कने के समय पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहें और खुले मैदान से में रहें, और घर में जो बिजली के तार और प्लग हैं वो स्विच वो गीले हाथों से ना
0: ना
1: छुएं। तो ये
0: छुए।
1: भी सावधानी
0: बहुत
1: जरूरी है,
0: बहुत
1: अगर
0: बड़ी सावधानी
1: पानी
0: है।
1: अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और पानी भरा हुआ है तो ध्यान रखें कि थोड़े बिजली खंभों से बच कर रहें।
0: क्योंकि इस
1: बहुत
0: समय
1: अच्छी
0: ना,
1: जानकारी।
0: बिल्कुल, और इस समय रश्मि जी क्या होता है कि गीले हम हाथ तो लगा देते हैं जल्दी जल्दी स्विच पर, एकदम देखते भी नहीं है कि
1: जी
0: घर में आए और दरवाजा खोला और लगा दिया, तो उससे
1: जी
0: फिर वो वही दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा,
1: जी
0: है ना।
1: और ऐसा भी होता है सिमरन कि जब बारिश का समय होता है तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होता है कि सीलन वगैरह ना हो, जैसा कि आपने बताया। तो अगर सीलन का ध्यान रखना है और हम चाहते हैं कि घर में खुशबू बनी रहे, तो
0: मुझे
1: एक
0: वही
1: जड़ी
0: चीज
1: बूटी
0: याद आ
1: ऐसी
0: रही
1: है जो
0: है।
1: बहुत काम की है,
0: बिल्कुल
1: जड़ी
0: सही
1: बूटी
0: कहा,
1: तो नहीं है बल्कि अच्छी खासी पेड़ होता है
0: पेड़ होता
1: और
0: है
1: वो है चंदन
0: चंदन।
1: का पेड़।
0: क्योंकि ये सच है कि ये रोग मुक्त और त्वचा के लिए

0: साधनों में जो है वो यूज होता है चंदन, है ना,
1: जी इस्तेमाल
0: मतलब
1: होता
0: इस्तेमाल
1: है।
0: होता है। और खास तौर पर कपूर, नींबू, खीरा, गुलाब और पुदीना, पुदीना का जो निचोड़ होता है वो भी इसमें यूज होता है, जो हमारे हम जो जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे क्रीम, पाउडर, कुछ कई चीजें इस्तेमाल करते हैं सौंदर्य प्रसाधन की, तो
1: आप
0: उसमें
1: कहना
0: भी
1: चाह
0: यूज
1: रही
0: होता
1: हैं,
0: है
1: आप कहना चाह रही
0: चंदन की
1: हैं,
0: तरह,
1: जी
0: चंदन की तरह।
1: जी
0: जी हाँ,
1: आप कहना चाह रही हैं कि अगर हम रोग मुक्त त्वचा अगर चाहते हैं तो चंदन के साथ ये सब चीजों का भी इस्तेमाल होता है। और इसमें अगर हम चंदन की बात करें तो इसमें सिर्फ औषधीय गुण ही नहीं होते, बल्कि ये प्रत्यक्ष रूप से त्वचा को प्रभावित करते हैं और दर्द में भी आरामदायक होते हैं। और अगर सौंदर्य प्रसाधन को ले लीजिए तो ये सारी जड़ी बूटियां तो इस्तेमाल होती ही हैं।
0: और अगर हम बात करें चंदन की, तो भारत में लोकप्रिय चंदन का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, और इसकी लकड़ी, इसका पाउडर, इसका लोशन तीनों ही तरह से काम में लाया जा सकता है।
1: जी, और त्वचा के लिए तो ये बहुत लाभकारी होता है। भाई भारत में जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि चंदन से सौंदर्य और त्वचा दोनों की रक्षा होती है, जलन और खरोंचों को भी दूर करता है और त्वचा को कम उम्र दिखाने में चमत्कारी प्रभाव देता है।
0: और ये सभी तरह की त्वचा के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि ये हल्का लोशन होता है, इसीलिए रूखेपन को दूर करके चेहरे की चमक लाता है, और चंदन युक्त क्रीम त्वचा को प्रदूषण, सूर्य की तेज धूप से भी बचाती है।
1: जी, और सिमरन अगर आपके पास चंदन की लकड़ी का छोटा सा भी टुकड़ा है और उसको अगर आप रगड़ लें और उसका जो लेप है माथे पर लगा लें, तो विश्वास कीजिए ये गर्मी के मौसम में ठंडक भी देता है, खुशबू भी देता है और आपके मन मस्तिष्क को बिल्कुल तरोताजा कर देता है। तो रूखेपन को भी दूर करता है। और चंदन युक्त जो क्रीम होती है वो तेज धूप से जैसे बचने के लिए आजकल कहते हैं ना सनस्क्रीन, तो जो उसका लेप होता है एक तरह से सनस्क्रीन का भी काम करता है। और चंदन का तेल कई प्रसाधनों में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी भीनी भीनी जो खुशबू है भाई वाह, उसके तो क्या कहने। तो चाहे बारिश का मौसम हो या गर्मी का, हर मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो क्या कहते हैं, चंदन एक रूपनिक।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में गीत, फिल्म थी आंगन की कली।
1: जी, और
0: और
1: कितने खूबसूरत बोलते हैं
0: मैं
1: सिमरन, भाई सुख के लिए पड़े दुख भी सहना, है ना। तो भाई अगर आपको सुख चाहिए जिंदगी में तो ये तो एक पहिया है, एक दुख आता है उसके बाद सुख आता है, और
0: बिल्कुल
1: यही आप शायद मुझे लग रहा है अगली
0: बात
1: बात
0: ही करने
1: बताने
0: है,
1: वाली
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बात ही कुछ
1: लेकिन
0: ऐसी
1: इस
0: करने
1: बात
0: है।
1: से पहले हम कुछ मेल शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आए हैं, आप कहें तो शामिल करें।
0: बिल्कुल करिए।
1: जी, इदरीस सैफी जुड़ गए हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं भी रोड पर अगर पानी भरा हो तो और रास्ता अनजान हो तो वहां पर गाड़ी ना चलाएं, भाई ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अनवर साबरी कह रहे हैं, लेकिन अनवर साबरी जी ने अब कोई वो लिखा नहीं है, संदेश नहीं लिखा, सिर्फ नाम लिखकर भेज दिया है। और कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह और शाहजहां बेगम कह रहे हैं कि आपकी आवाज जो है प्रीति मोहन जी से मिलती जुलती है। रश्मि जी आपकी आवाज,
0: वो बहुत
1: और
0: अच्छी, ये तो बहुत
1: जी
0: तारीफ की
1: इसके
0: है मैंने
1: अलावा
0: फिर
1: हमारे पास
0: रश्मि
1: एक
0: जी
1: और
0: की।
1: संदेश आ गया है। आप हैं विवेक विहार से हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष जी। वो कह रहे हैं कि जब आप बारिश में वाहन चलाएं और बाहर निकलें तो ध्यान रखें, क्योंकि तेज बारिश में जो दिखाई देना कम हो जाता है, तो वाहन धीमी गति से चलाएं। और साथ ही वे लिखते हैं कि अगर आप दोपहिया वाहन पर हैं तो हेलमेट जरूर पहने, और साथ में जो रेन गियर रखें, माने आप कुछ बरसाती वगैरह साथ लेकर चलें, और पानी में वाहन बंद हो जाए तो उसे बार बार स्टार्ट करने की कोशिश ना करें। भाई ये मेरे लिए भी जानकारी है। और अंडर पास और निचले इलाकों में और तेज बहाव वाले रास्तों से वो कह रहे हैं बचें, ये भी बहुत जरूरी है। भाई अंडर पास में जो है पानी भरने का डर रहता है, वहां सावधान रहें, और सड़क पर चलते समय खुले मेन होल और टूटे फुटपाथ से सावधान रहें। हमारे श्रोता कितने जानकार हैं, जागरूक हैं, और क्यों ना हो भाई, FM
0: बिल्कुल
1: गोल्ड से जुड़े हैं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के श्रोता हैं। ये तो वाकई बहुत जागरूक और सावधान हैं, और हम भी उनसे बहुत कुछ रोज सीखते हैं।
0: मैं भी ये कहने वाली थी, इसीलिए परेशानी में सांस को बनाए रखे, परेशान
1: जी
0: ना होइए क्योंकि जीवन
1: तो
0: एक यात्रा है, इसमें सुख दुख दोनों आते हैं। कभी खुशियों की धूप होती है, कभी कठिनाइयों के बादल छा जाते हैं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि परेशानी के समय हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए।
1: जी, अभी जैसे ट्रैफिक की ही बात हो रही थी, तो अंधेरी रात के बाद जैसा आपने कहा कि नया सवेरा आता है और हर परेशानी कोई ना कोई सीख सिखा कर जाती है। कई बार ऐसा होता है सिमरन कि हम परेशानी में ना घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं, और हम अपने अंदर जो छिपी शक्ति है उसको पहचान नहीं पाते।
0: बिल्कुल सही।
1: भाई जिन लोगों ने मुश्किल समय में धैर्य और साहस बनाए रखा, वही आगे चलकर सफलता की मिसाल भी बने।
0: देखिए, चाहे बीमारियों

0: आर्थिक समस्या, रिश्तों में तनाव हो या फिर किसी प्रियजन का बिछड़ना, हर चुनौती का सामना हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए।
1: जी, और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका परिवार है, मित्र है, आपके अपने हैं, ये सब आपको मानसिक शक्ति देते हैं। और साथ में अच्छी बातें पढ़ें, संगीत सुने, प्रार्थना करें और अपने मन की बात अपने विश्वसनीय व्यक्ति से या किसी दोस्त के साथ जरूर साझा करें।
0: और साहस का अर्थ है डर और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहना। छोटी छोटी कोशिशें भी हमें बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल सकती हैं।
1: तो सिमरन, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें विश्वास रखना चाहिए प्रभु पर कि ये समय भी गुजर जाएगा और अपने मन में उम्मीद की एक लौ जो है वो हमेशा जगा कर रखनी चाहिए।

0: और रश्मि जी, चलते चलते एक मेल और पढ़ दूं।
1: जी
0: ये
1: जरूर।
0: आया है रानी शर्मा का, और इन्होंने लिखा है कि हर मौसम अपने साथ कुछ परेशानी तो लेकर आते हैं, लेकिन इस मौसम में कमरे के बाहर पैर पहुंचने के लिए पायदान जरूर रखें, और खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे और कालीन का उपयोग ना ही करें तो अच्छा है।
1: जी बिल्कुल। और एक और संदेश हमारे पास आया है, वो कह रहे हैं आप हैं तिलक नगर से उदयन, आप कह रहे हैं भाई बारिश में सावधानी बरतनी जरूरी है, पहले तो छाते का ध्यान रखिए और सड़क पर अगर पानी दिखे तो धीरे चलिए, क्योंकि पता नहीं नीचे सड़क है या गड्ढा है भाई, और मच्छरों से बचकर रहना वो कह रहे हैं जरूरी है, क्योंकि भाई अब घर घर घूमने का सीजन आ गया, क्योंकि इस समय भाई ध्यान रखना जरूरी है, अगर पार्क में बच्चों के साथ जाएं तो जरूर कुछ ना कुछ मच्छर जो बचाने की जो क्रीम है बच्चों पर जरूर लगा लें, क्योंकि इस समय डेंगू और चिकनगुनिया का भी मौसम आ गया है, हम आप बता दें सभी सुनने वालों को। तो सिमरन आगे क्या कहना चाह रही हैं?
0: आगे बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि समय जो देख रही हूँ घड़ी का, वो होने वाला है
1: जी,
0: समाप्त।
1: तो अनुमति लेते हैं अपने सभी सुनने वालों से।
0: तो यूं ही सुनते रहिए, और इसी वादे के साथ रश्मि जी और मुझे यानी सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन। घर आंगन

0: पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जेएएसी ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during a student protest over the NEET issue. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated Indian athletes who won medals at the Commonwealth Games, including para-athlete Sharmila Dhankar on winning the gold. He also applauded Anahat Singh on winning the World Junior Squash Championship. Later, when Mr. Birla tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering over the alleged police action against students during the protest. The Speaker said the House should function smoothly, engage in meaningful dialogue and deliberate on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill.
2: I appeal that no matter how much deadlock there may be or how big the issue is, I request the honorable members that there should be no disruption during question hour. A positive message should go out across the entire country that discussions and dialogue take place in the parliament.
1: As the uproar continued, the speaker adjourned the house till 2 p.m. The Rajya Sabha was also adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the House assembled at 11 a.m., several union ministers laid the papers on the table of the House. The report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution was also presented. The government has approved the Reserve Bank of India RBI's proposal to introduce polymer banknotes in the denominations of 10 and 20 rupees. In a written reply in the Lok Sabha, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary informed that RBI had sent a proposal to the government for the introduction of 1 billion pieces each of 10 and 20 rupees polymer banknotes for field trials. He said regular issues

0: issuance of polymer banknotes in these two denominations will be done after successful completion of field trials. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan was held today at Parliament House. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and other leaders were present at the meeting. MPs from Trinmool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India NCPI, also attended the alliance meeting. In Assam, the flood situation has shown further improvement, with the number of affected districts coming down to 6. According to the latest official report, Shivasagar, Golaghat, Charaideo, Jorhat, Nagaon and Kamrup metropolitan districts continue to be affected by the deluge. Rescue and restoration work is underway. Prime Minister Narendra Modi today met members of parliament from Assam and discussed the prevailing flood situation in various parts of the state. Sharing the information through a social media post, the Prime Minister said the centre is working closely with the Assam government in assisting those affected. He also prayed for everyone's safety and well-being. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Chhattisgarh and Odisha for the day. An orange colour warning for very heavy rainfall has been issued for Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh till tomorrow. Heavy rainfall conditions will continue over parts of northeast India, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Gujarat, West Bengal and Vidarbh during the next 2 days. At least 20 people were killed and several others injured during a long march organized by the Joint Awami Action Committee, JAAC, in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In a social media post, JAAC said the long march caravans had reached Rawalkot. The march was organized after talks between JAAC and the Pakistani authorities reportedly failed to reach a mutually acceptable outcome. India's para-athlete Sharmila Dhankar won the gold medal in the women's shot put event at the Commonwealth Games in Glasgow last night. With this achievement, Sharmila also became India's first ever Commonwealth Games para-athletics gold medalist. Her triumph ended India's 20-year wait for a para-athletics medal at the Games. Indian high jumper Sarvesh Kosari also clinched a silver medal in the men's high jump event at the Scotstoun Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading with marginal gains in the afternoon session today. The Sensex added 79 points to 76,915 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: Kilohertz पर ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आप हमारे प्रसारण डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं, साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन एआईआर लाइव न्यूज 24x7 पर भी। श्रोताओं, दोपहर के 1:10 हुए हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीतों से सजी फिल्म की थोड़ी सी कहानी और जानकारी, साथ में उसके वो खूबसूरत गीत जो आज भी लोकप्रिय हैं और लोगों की जबान पर हैं। सुनेंगे और चर्चा करेंगे इस फिल्म के बारे में, लेकिन उससे पहले एक संदेश।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जी हाँ श्रोताओं, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, ताकि आप जो डिजिटल लाभ आप ले पा रहे हैं, हम ले पा रहे हैं बदलते हुए दौर में, इस बदलती हुई प्रौद्योगिकी का जो फायदा हम

घर बैठे उठा पा रहे हैं उसका हमें नुकसान या खामियाजाना उठाना पड़े। और अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सिलसिला। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एक ही फिल्म से कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम जैसा कि बता रहे हैं कि आरजू फिल्म की बात करने वाले हैं। आरजू फिल्म 1965 में आई थी और इस फिल्म में अगर हम मुख्य भूमिकाओं की बात करें तो राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान रहे और अन्य साथी कलाकार जो जिनकी बहुत अहम भूमिका रही पूरी पटकथा में, उनमें शामिल है महमूद, नाजिमा, नजीर हुसैन, अचला सचदेव और धूमल। राजेंद्र कुमार जो गोपाल और सूरज की भूमिका, दो नाम थे उनके, उसमें थे। उषा की भूमिका में थी साधना और फिरोज खान रमेश की भूमिका में। हाउस बोट मालिक जिसे मामूद के नाम से आपने देखा होगा, महमूद आप जानते ही हैं, सरला की भूमिका में नाजिमा थी और दीवान किशन किशोर की भूमिका में थे नजीर हुसैन। गोपाल की मां बनी थी अचला सचदेव और धूमल ने मुंशी अशादौला लाल की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में 1965 की इस फिल्म में जो पटकथा थी और गीत थे वो सभी को पसंद आए। रामानंद सागर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजेंद्र, जैसा कि मैंने कहा कि राजेंद्र कुमार और साधना फिरोज खान जैसे सितारों ने अपने अभिनय से एक ऐसी कहानी रची जिसमें श्रोताओं प्यार था, इंतजार था और हालात से जूझता हुआ दिल भी था। शंकर जयकिशन का मधुर संगीत और हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के सधे हुए बोल, इन सब ने एक साथ मिलकर आरजू को एक यादगार एहसास बना दिया। अगर हम गायकों की बात करें तो मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और आशा भोसले, साथ में एक गाना जो काफी पसंद किया जाता है उसमें तमाम साथी कलाकारों की आवाजें सुनाई पड़ेंगी जो आपको इस कार्यक्रम के सबसे अंत में उस गीत को हम सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो कार्यक्रम का पहला गाना है वो है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी गीत के साथ जिसमें प्यार की नाजुक शरारत और रूठने मनाने की प्यारी सी अदा झलकती है।

क्या खूब बात है इस गीत की, हल्की सी नोकझोंक, थोड़ी सी मासूम जिद और दिल से निकली सच्ची मोहब्बत, यही तो उस दौर के गीतों की पहचान हुआ करती थी। आरजू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां दो दिल मिलते हैं मगर किस्मत उन्हें बार बार परखती है। राजेंद्र कुमार और साधना की जोड़ी में एक सादगी है, एक अपनापन है जो सीधे दिलों तक पहुंचता है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत आपने सुना, और इस गीत ने उस दौर के एहसासों को अपने शब्दों और खूबसूरत धुन ने हम सभी के सामने एक तस्वीर सी प्रस्तुत की। आरजू फिल्म का ये पहला गाना, और आइए अब सुनते हैं एक और दिलकश नगमा जो अपने शब्दों में ही पूरी तरह उस भावना की तस्वीर खींचता है। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

दोस्तों, इस गीत में कितनी खूबसूरती से प्यार का इजहार है, बिना किसी दिखावे के, बस दिल की सीधी सी बात। फिल्म में फिरोज खान का किरदार कहानी में एक अलग रंग भरता है और यहीं से रिश्तों की राह थोड़ी उलझने लगती है। दरअसल सूरज, जिसका पहले नाम गोपाल होता है, राजेंद्र कुमार की बात मैं कर रहा हूं, वो छुट्टी में कश्मीर जाते हैं और वहां पर अपने असली नाम नहीं, नकली नाम के साथ वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें हो जाता है प्यार उषा यानी साधना से, जो सूरज नाम से, सरजू नाम से उनसे मिलते हैं। और एक एक्सीडेंट में उनके साथ कुछ ऐसे ही दुर्घटना होती है कि उनके पैर खो जाते हैं, वो अपाहिज हो जाते हैं और फिर वो उषा यानी साधना से दूर होने लगते हैं ताकि वो अपने जीवन में खुश रह सके। और फिर एंट्री होती है फिरोज खान की, जिसका जिक्र मैंने किया, रमेश की, और यहाँ पर प्रेम त्रिकोण का ये उलझन की उलझन यहाँ इस फिल्म की पटकथा को और जो दर्शक होते हैं उनके प्रति उनके उन, उन उनको अपने प्रति आकर्षित करती हुई नजर आती है। कार्यक्रम का जो अगला गीत है, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आरजू सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि उन एहसासों की दास्तां है जहां जुदाई भी है, जुदाई भी उतनी ही सच्ची लगती है जितना मिलन। और जब दर्द शब्दों में ढलकर सुरों में मिलता है तो वो गीत हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। तो अब सुनिए एक ऐसा ही गीत जिसमें इंतजार और तड़प की गहराई साफ झलकती है और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़

हसरत जयपुरी के बोलों को सुंदर संगीत शंकर जयकिशन के साथ, ये मधुर आवाज लता मंगेशकर की और आरजू फिल्म, आप आरजू फिल्म के गाने सुन रहे हैं एक ही फिल्म से के अंतर्गत। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने हर भाव के लिए अलग रंग की धुनें रची, जो आज भी श्रोताओं को गीतों के साथ गुनगुनाने को बाध्य करती हैं। और जिस गीत को हम सुन रहे हैं, इसके हर एक शब्द में एक सच्चाई है, एक खामोश पुकार है, जिसे हसरत जयपुरी ने महसूस करते हुए लिखा। और इसीलिए जब कोई सुनता है तो वो भी उन भावों के पीछे वो दर्द, वो कहानी, वो एहसास महसूस कर पाता है। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के शब्द जब सीधे दिलों के साथ जुबान तक पहुंचते हैं तो मधुर गीत बन जाते हैं। आइए एक और गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सा नगमा ये भी है, और इस गीत को फिल्माया गया है राजेंद्र कुमार और साधना पर।

श्रोताओं, आरजू का हर गीत अपने आप में एक एहसास है, कभी मुस्कान देता है तो कभी आंखें भी नम कर देता है। ये फिल्म उस दौर की याद दिलाती है जब मोहब्बत में सादगी थी, इजहार में संकोच था और इंतजार में सुकून। आज के तेज दौर में भी ये गीत हमें थोड़ी देर ठहर कर दिल की आवाज सुनने का मौका देते हैं। आरजू के इन मधुर गीतों के साथ आज का ये सुरीला सफर अब अपने समापन की ओर है, और अब कहानी का वो पहलू इस गीत के माध्यम से जो इस पूरी फिल्म की पटकथा को एक नया मोड़ देता है। ये गीत अदाकारा साधना से उनके मन में चल रहे तूफानों को प्रतिबिंबित करता है, और ऐसा लगता है जैसे खुद उनका दिल उनसे सवाल कर रहा है और साधना यानी उषा अपने ही सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। कव्वाली की तर्ज पर आइए सुनते हैं आशा भोसले और मुबारक बेगम के स्वर में ये गीत।

श्रोताओं, संगीत की ये जो झलक आप सुन पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरी फिल्म के जितने भी गाने थे, सभी गानों में अलग अलग तरह का संगीत, अलग अलग के भाव, मूड, और शंकर जयकिशन ने ऐसा चाहा होगा कि शायद आखिरी गाने में सभी गानों की एक झलक, सभी गानों की धुनों की झलक हम दे देंगे। तो आशा भोसले और मुबारक बेगम के स्वर में इस गीत के साथ ही और साथियों की आवाज़ों के साथ ही आज का एक ही फिल्म से के इस कार्यक्रम को अब संपन्न करने की मैं, यानी देवेंद्र त्रिपाठी, चाहूंगा अनुमति। उम्मीद करता हूं आरजू फिल्म की कुछ छोटी मोटी बातें और ये गाने आपको पसंद जरूर आए होंगे। फिलहाल दीजिए अनुमति, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 1:40 होने को है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।

0: में सोने का तमगा जीतने पर पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को मुबारकबाद दी। बाद में जनाब ओम बिरला ने सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलाने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ने एहतजाज के दौरान तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई के मामले पर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर मौसूफ ने कहा कि ऐवान में कामकाज खुशसलूबी के साथ होना चाहिए और पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बामकसद बहस मुबाहसा होना चाहिए। जनाब बिरला ने सरकार और अपोजिशन दोनों पर जोर दिया कि इत्तेफाक राय कायम करके मजकूरा बिल पर बहस शुरू की जाए।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
0: जब शोरगुल होता रहा तो स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा में भी इसी मामले पर हंगामा आराई के तनाजुर में ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने आज कहा है कि एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग के दौरान अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ मुल्कों के साथ भारत की तिजारत और आजाद तिजारती समझौतों के मुतालिक ताजा तरीन हालात के बारे में मालूमात फराहम की गई। पार्लियामेंट के इहाते में नामा निगारों से बात करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने उम्मीद जाहिर की कि सभी सियासी पार्टियां सरकारी इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के बिल पर लोकसभा में होने वाले बहस मुबाहसे में तामीरी रुख अपनाएंगी।
2: आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: राज्यसभा में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल ने रियासत में बार बार मुबैना पेपर लीक के वाकयात के बारे में पंजाब सरकार की नुक्ताचीनी की और पंजाब के वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के इहाते में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 साल के दौरान पंजाब में पेपर लीक और नकल के 6 बड़े वाकयात हुए। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने आज कहा है कि अपोजिशन पब्लिक इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के बिल पर लोकसभा में होने वाले बहस मुबाहसे के तई पुरउम्मीद है। पार्लियामेंट के इहाते में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने पूरे निजाम का जायजा लेने और उसमें बेहतरी लाने की जरूरत पर जोर दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या 1-2 चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण, पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर रहनुमा इस मीटिंग में मौजूद थे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। तृणमूल से अलग होने वाले अरकान पार्लियामेंट के धड़े एनसीपीआई ने भी इत्तेहाद की इस मीटिंग में शिरकत की। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इम्तहानात में पेपर लीक के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतालिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया था। वजीर आजम ने नीट इम्तहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाकये में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के तई सरकार के अहद को दोहराया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये मालूमात फराहम करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मरकज मुतासरीन की मदद के लिए आसाम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने हरेक की हिफाजत और खुशहाली के लिए भी दुआ की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी बैन अलावामी हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एन स्पोक मॉडल के आगाज के साथ पंजाब का राबता शिमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 मकामात से कायम हो गया है। अमृतसर से रोजाना दो इजी कनेक्ट परवाजें रवाना होंगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोदी

नायडू ने कहा कि अमृतसर शिमाली भारत के लिए बैन अलाक्वामी गेटवे बन जाएगा। पंजाब, जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत बहुत से इलाके अमृतसर के जरिए मुंसलिक होंगे। हुकूमत ने 10 और 20 रुपए की कदर के प्लास्टिक के बैंक नोट शुरू करने की भारतीय रिजर्व बैंक के तजवीज को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में खजाने के वजीर मम्लकत पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने 10 और 20 रुपए की कदर वाले 1-1 अरब रुपए चलन में लाने के लिए हुकूमत को एक तजवीज भेजी है। झारखंड की नई दिशा नई पहल नक्सल मुखालिफ मुहिम को आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि कोल्हान और लातेहार खित्तों से ताल्लुक रखने वाले 16 सरगर्म माओनवाजों ने रांची में झारखंड पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। खुद सुपुर्दगी करने वालों में एक इलाकाई कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सतह के अरकान शामिल हैं। इनमें इलाकाई कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में साइबर क्राइम मामलों में E0 FIR दर्ज करने का निजाम शुरू किया है। उमूर दाखिला के वजीर ममलकत बी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है ताकि वो साइबर जराइम मामलों, खासतौर से साइबर माली धोखादेही मामले में E0 FIR दर्ज कर सकें। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए इंतहाई तेज बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक के लिए बहुत तेज बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शमाल मशरकी भारत, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, मगरबी बंगाल और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई शोरगुल के दौरान शुरू होने के फौरन बाद ही मौतल कर दी गई।

0: A flash flood warning for the next 24 hours for the districts of Chamba, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Sirmaur and Solan. A report.
1: The Meteorological Centre Shimla has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall today in five districts, Chamba, Kangra, Mandi, Shimla and Sirmaur. A yellow alert for heavy rainfall has also been issued for Una, Bilaspur, Hamirpur, Solan and Kullu districts. In view of the forecast of heavy rainfall, all educational institutions in the Paonta Sahab subdivision of Sirmaur district have been ordered to remain closed today. According to the State Emergency Operations Centre, 108 roads across the state remain blocked due to landslides and heavy rain. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: Meanwhile, in Uttarakhand, the Char Dham Yatra routes have been blocked at several locations due to landslides. Keeping the safety of pilgrims in mind, the Char Dham Yatra has been suspended till tomorrow. Continuous rainfall has caused the water level of major rivers in the state to rise. The state government is closely monitoring the situation and disaster response and rescue teams have been kept on alert in vulnerable areas. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs the release of student protesters below 18 years and those having no criminal record. Both Houses of Parliament adjourned soon after assembling amid ruckus. Lok Sabha scheduled to take up anti-paper leak amendment bill today. Air India launches Easy Connect hub and spoke model at Amritsar Airport, connecting Punjab with 27 global destinations. 16 Maoists, including 6 top commanders, surrender before security forces in Jharkhand. Government introduces system of registering E0 FIRs in cybercrime cases across 18 states and union territories. 7.1 magnitude earthquake hits southern Japan, tsunami warning issued. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीच मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन

0: धन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: दिस वाज नॉट गिवन ड्यू कंसीडरेशन फॉर व्हाटएवर रीजंस एंड फॉर व्हाटएवर इंटरेस्ट। सो आई थिंक यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट। इट हैज फिनिश्ड एन अनफिनिश्ड टास्क व्हिच यू शुड हैव अकम्प्लिश्ड।
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
4: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
5: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस कमीशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
1: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी है। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
2: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसाबांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक

तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
1: और राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
1: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
1: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जी

0: जीवन का एक प्रेरक प्रसंग जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
1: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे।
0: जी, उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
1: बिल्कुल।
0: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
1: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
0: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं।
1: जी,
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
1: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं, कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है।
1: जी श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
0: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है।
1: जी,
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: जी श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
1: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना।
0: जी, तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
0: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
1: NCERT की 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: और श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

0: हाँ तो बच्चों, बताओ सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
6: नमस्ते बहन जी।
7: नमस्ते।
6: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते शिखा।
0: अरे दीदी जी, आप
8: आइए आइए।
0: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते, यहाँ बैठिए
0: जी,
8: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
0: अरे बहन जी, कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
8: ठीक कहती हैं आप, काम में से

0: समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
1: हाँ ये तो है।
0: अरे लो, लता के बापू भी आ गए। राम राम दादा, कैसे
2: हाँ, राम राम। अरे आप यहाँ?
1: हैं
2: लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
1: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूं मैं।
2: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
1: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है। अरे
2: अच्छी, और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
1: लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ बैठो मेरे पास।
3: जी दीदी।
2: लता जाओ यहां से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी, आप इसकी मां से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हाँ,
1: जी
4: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी मां भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
1: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
5: दीदी लता।
1: लता?
6: जी दीदी।
1: क्या ये लता?
6: जी दीदी।
1: अरे नहीं।
6: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
1: अच्छा,
6: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े, पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया। सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
1: अच्छा
6: जी दीदी।
1: लता, ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता-पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भरी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने। हाँ
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: हाँ। नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही है बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।

0: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
1: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
0: हैं?
1: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
0: हो
1: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
0: बहन जी, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
1: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
0: जी
1: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
0: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
1: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।

0: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।
1: शाम को मेरे घर आएगी?
2: हाँ हाँ,
1: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
2: अच्छा,
1: उसके सचमुच के बाल है।
2: ओहो,
1: और एक कंघी भी है।
2: अरे सच? फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
1: ठीक है।
3: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
2: ठीक है ठीक है, आ जाना।
1: अच्छा,
2: मैं भी आ जाऊँ लता?
1: हाँ हाँ,
4: मैं भी आ जाऊँ लता?
2: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
0: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा है कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने लोक परीक्षा अनुचित साधन
1: सामीन अदवर्स, ये आकाशवाणी है। सपेर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशियात का आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामीन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नज़र डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

दोपहर 3:30 बजे प्रोग्राम पेश किया जाएगा आदब नुमा, और शाम 4 बजे आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नाखों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। चार बजकर 50 मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। सहपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: रजी अहमद से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। एयर इंडिया ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब को 27 आलमी मकामात से जोड़ने वाले इजी कनेक्ट हब एंड एक्सपोक मॉडल का आगाज किया है। झारखंड में 16 मौनवाजों ने, जिनमें चोटी के 6 कमांडर भी शामिल हैं, हिफाजती दस्तों के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में साइबर क्राइम केसेस में E0 FIR दर्ज करने का निज़ाम शुरू किया है। IMD ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इंतहाई शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुजाहरा करने वाले उन तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने हुक्काम से यह भी कहा है कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर हालिया मुलगीर मुजाहरों से मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद भी महफूज रखें। अदालत ने यह भी कहा है कि पिछले हफ्ते तलबा के मुजाहरों के दौरान तलबा और पुलिस अफसरान के जख्मी होने के इल्जामात की एक शफाफ और आजादाना तफ्तीश कराए जाने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत करते हुए, जिनमें मुजाहरों के दौरान पुलिस का मुबीना तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बुरी हिदायत जारी की हैं। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी बलकवामी हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल के आगाज के साथ पंजाब का राबता शुमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 मकाम से कायम हो गया है। अमृतसर से रवाना रोज़ाना 2 इजी कनेक्ट प्रवाजें रवाना होंगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि अमृतसर शुमाली भारत के लिए बलकवामी गेटवे बन जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत बहुत से इलाके अमृतसर के जरिए मुंसलिक होंगे। झारखंड की नई दिशा नई पहल नक्सल मुखालिफ मुहिम को आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि कोल्हान और लातेहार खित्तों से ताल्लुक रखने वाले 16 सरगर्म मौनवाजों ने रांची में झारखंड पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। खुद सुपुर्दगी करने वालों में एक इलाकाई कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 कैडर सतह के अरकान शामिल हैं। इनमें इलाकाई कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है, जिस पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लिमानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हुई, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर रहनुमा इस मीटिंग में मौजूद थे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। तृणमूल से अलग होने वाले अरकान पार्लियामेंट के अरकान NCPI ने भी इत्तेहाद की इस मीटिंग में शिरकत की। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इम्तहानात में पेपर लीक के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतालका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म ने नीट इम्तहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ

0: सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं है। एयर इंडिया ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब को 27 आलमी मकामात से जोड़ने वाले इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का आगाज किया है। झारखंड में 16 मौनवाजों ने, जिनमें चोटी के 6 कमांडर भी शामिल हैं, हिफाजती दस्तों के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाकों में साइबर क्राइम केसेस में E0 FIR दर्ज करने का निज़ाम शुरू किया है और IMD ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इंतहाई शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त नईम हाजिर खिदमत है, आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में खराज अकीदत अपने वक्त की मरूफ अदाकारा कुमकुम को, उनका असल नाम जेबुन निसा खान था, 22 अप्रैल 1934 को बिहार के शेखपुरा में उनका जन्म हुआ। वो हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अदाकारा थीं। उन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और कहा जाता है कि गुरुदत्त अजीम अदाकार ना और फिल्म साज कुमकुम उनकी खोज थी। सबसे पहले गुरुदत्त की आर पार फिल्म से अपने करियर का उन्होंने आगाज़ किया। इसके अलावा मदर इंडिया, नया दौर, सन ऑफ इंडिया, आँखें, ललकार, कई और फिल्मों में उन्होंने बहुत खूबसूरत अदाकारी के फ़राइज़ अंजाम दिए और तारीख की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ई बो, इस फिल्म की वो अदाकारा थी। शुरुआत के दौर में कुमकुम ने अदाकार धर्मेंद्र के शुरुआती दिनों में उनका साथ दिया था। 28 जुलाई यानी आज के दिन 2020 में मुंबई में कुमकुम ने आखिरी सांस ली।

हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। गंगा मैया, तोहे पियर चढ़ाइबों से जो शुरुआत हुई थी, उसके अलावा लागी नाही छोटे राम, बलमा, बड़ा नादान, नैहर छोटो जाए, भौजी और गंगा जैसी फिल्मों में अदाकारी करके एक अलग मकाम उन्होंने हासिल किया था भोजपुरी फिल्मों में। 28 जुलाई सन 2020 में मुंबई में उन्होंने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली।

0: फिर एक शेर आपकी नज़ करने का दिल कर रहा है,
1: जी जरूर
0: चलिए साहिबा से
1: इरशाद।
0: बात करें। बदली हुई दुनिया,

0: क्या बात,
1: ना बन
0: क्या बात, बेहतरीन
1: जाए।
0: बेहतरीन, बहुत
1: हाँ बहुत
0: खूबसूरत।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हालात की मजबूरी
0: शमशीर ना बन जाए,
1: शमशीर ना बन
0: क्या उम्दा
1: जाए।
0: शेर।

0: सामईन अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा अना देहलवी से उनका कलाम, और लीजिए अब सुनिए अफसाना। उन्वान है उसकी नजर से, पेश कर रहे हैं जनाब शफीउज़्ज़मा।
1: छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए थे, दरवाजों पर एक तरफ चारपाई डाले कुछ बूढ़े गपशप कर रहे थे और दूसरी तरफ नंग धड़ंग बच्चे धमा चौकड़ी मचाए हुए थे। उन छोटे छोटे मकानों के इर्द गिर्द अनगिनत खुदरों पौधे उगाए थे। उन खुदरों पौधों में से बास तो तनावर दरख्त बनने के लिए पर तोल रहे थे। ज़रा और आगे चलकर एक तरफ को तालाब नजर आया, जिसके गंदे पानी में सिंघाड़े की बेलें फैली हुई थीं। तालाब के किनारे सरसब्ज झाड़ियाँ और मुख्तलिफ रंगों के जंगली फूलों की अफराद थी। तालाब का पानी ठहरा हुआ था, पूरी फ़जा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। मेरी आंखों में थोड़ी देर पहले का नागवार तसव्वुर धुंधलाने लगा और मैं धीरे धीरे इस हसीन मंजर में गुम होता चला गया। नीलूफर के मामूली से डाइनिंग रूम में आसमानी रंग के कवर वाले आरामदह सोफे की पुश्त पर टिक कर मैं सामने दीवार पर लगी नीलूफर की बनाई उस शानदार पेंटिंग को देखता रहा। वो शायद अब किचन में मेरे लिए कॉफ़ी बना रही थी। कॉफ़ी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे किचन में बर्तन धोते हुए देखा था। नीलूफर जैसी नाजुक मिजाज और नफासत पसंद लड़की इस कदर बदल जाएगी, मैंने कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने उसके खूबसूरत नाजुक हाथों को हमेशा फूल चुनते देखा था।

वो उन हाथों से खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते बनाया करती थी, वो इन नाजुक हाथों से ब्रश थाम के खूबसूरत पेंटिंग्स बनाया करती थी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि नीलूफर एक नाकाबिले बर्दाश्त शख्स के साथ उसके इस कदर मामूली घर में जिंदगी गुजारते हुए उसके गंदे बर्तन भी धोएगी। नीलूफर मेरे बचपन की दोस्त थी, दोस्ती भी ऐसी कि हर देखने वाला रश करता। ये बहुत कम लोगों को मालूम था कि मैं उसका दूध शरीक भाई भी हूं। उसकी यह हालत देखकर मेरा दिल भर आया था। वो एक नाजुक मिजाज हुस्न परस्त लड़की खुद को इस तरह बदल लेगी, ये मेरे लिए इंतहाई हैरान कुल अम्र था। और फिर एक ऐसे शख्स के लिए जिसे वो जानती तक नहीं थी, जिससे उसने मोहब्बत नहीं की थी, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, न उसके पास आला तालीम थी न पैसा, उसकी शख्सियत में कोई चार्म भी नहीं था। ये शादी मोहब्बत की होती तो शायद लोगों को सब्र आ जाता। हाँ, नीलूफर को मोहब्बत भी तो नहीं थी उस शख्स से। फिर क्या हुआ, क्या देखा था उसने? मुझे नीलूफर पर सख्त गुस्सा आ रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने भी उसे अपने बड़े भाई के लिए चाहा था, अपने खूबसूरत और स्मार्ट भाई के लिए जो आर्मी में सेकेंड लेफ्टिनेंट थे, बल्कि इसलिए कि वो मुझे बेहद अजीज थी। हम बचपन से साथ साथ पले बढ़े थे, हम एक दूसरे से दिल की बातें किया करते थे। मेरे भाई के लिए जब उसने इनकार किया था तो मेरे दिल से दुआ निकली थी, खुदा करे कि नीलूफर को बहुत अच्छा आदमी मिले, मेरे भाईजान से भी अच्छा, जैसा वो चाहती है। और आज 8 बरस बाद जब मैं बम्बई से अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ वापस आया हूँ तो मुझे पता चला है नीलूफर ने शादी कर ली एक नाकाबिले बर्दाश्त आदमी के साथ। क्या वो उससे मोहब्बत करती थी? मैंने अपने आप से कई बार ये सवाल किया, क्योंकि फनकारों का भरोसा क्या है? कोई शहजादी किसी मजदूर पर कब आशिक हो जाए, भरोसा क्या है? मैंने फिर पूछा, क्या वो उससे मोहब्बत करती थी? नहीं, ताहिरा ने उदासी से कहा था, उसने तो फैसला करने से पहले उसे देखा भी न था। नीलूफर ने जब मेरे भाई के लिए इनकार किया था तो मम्मी ने उससे छोटी बहन ताहिरा को काशिफ भाई के लिए मांग लिया था, और अब ताहिरा मेरी भाभी थी। भाई की शादी में शिरकत के लिए मैं भी चंद दिनों को लखनऊ आया था, और तब नीलूफर मुझे बहुत थकी थकी सी लगी थी। उसकी अम्मी को मैं भी अम्मी कहा करता था। उन्होंने मुझे बताया कि इस वक्त भी उसके कई बहुत अच्छे प्रपोजल्स हैं, मगर वो किसी को खातिर में नहीं ला रही। मुझे शक हुआ, वो ज़रूर किसी को पसंद करती है और अपनी पसंद को छिपा रही है, लेकिन मैंने पूछा तो वो हंस पड़ी थी। ये तुम्हारी गलतफहमी है अरशद, अगर मैं किसी को पसंद करती तो उसे हासिल भी कर सकती थी। मैंने सोचा, वाकई कौन बेवकूफ़ नीलूफर के हुसूल से इनकार कर सकता है, मगर अरशद अब मैं थक गई हूँ, जी चाहता है अपना घर हो। अच्छा, मैंने हैरत से पूछा, तो फिर इंतखाब कर लो, तुम्हारे पास तो कई अच्छे प्रपोजल्स हैं, वो फैसला कैसा रहेगा? वो तो तुम में बड़ी दिलचस्पी लेता रहा है। उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, देखा नहीं, हंसता है तो सारी शख्सियत मात पड़ जाती है। फिर उसने कदर संजीदगी से कहा, अगर फैसल जैसा ही कोई आदमी मुंतखब करना था तो जाने कब का ब्याह कर चुकी होती। उसकी हंसी मेरी तबीयत पर गिरा गुजरती है। मैं उसके नाजुक मिजाज और हुस्न परस्त तबीयत से वाकिफ था। उसके ख्वाबों का शहजादा मुकम्मल आदमी होना चाहिए, चलने में, बोलने में, सोने में, हंसने में। वो कोई मामूली सी कमी भी अपने शहजादे में नहीं देखना चाहती थी। उसने किसी मामूली कमी के बिना पर बेशुमार लोगों को रद्द कर दिया था। ऐसा करने में वो हक बजानिब थी। उसे खुदा ने फुर्सत के लम्हों में अपने हाथों से बनाया था। उसने एमए किया था एंशेंट हिस्ट्री में। कदीम तहजीबों के मुताले में उसे खास दिलचस्पी थी। अपने शौक की खातिर तस्वीरें बनाती थी। ब्यूटिशियन और इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स भी किया था। कपड़े और कागज़ के बहुत खूबसूरत फूल बनाया करती थी। हाथों में कलम और सामने कागज़ हो तो बेख्याली में भी गुलबूटे बनाया करती। खाना तो बहुत उम्दा बनाती थी, लेकिन शायद ही कभी उसकी मम्मी ने किचन में उससे कोई काम लिया हो। ताहिरा तो फिर भी खाना बना लिया करती थी। उसने जब मेरे भाई के लिए इनकार किया था तो मैंने उससे बहुत पूछा था, आखिर क्या कमी है मेरे भाई में? उसने सिर्फ इतना कहा था, मुझसे मत पूछा करो अरशद, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने सोचा शायद कामिल को पसंद करती हो, लेकिन जब उसके बारे में पूछा तो हंस पड़ी। हाँ अरशद, कामिल हर तरह से अच्छा है, लेकिन हंसता मुस्कुराता। यकीन करो, जब संजीदा होता है तो बिल्कुल बोंगा लगता है। इस तरह एक एक करके वो सबको रद्द करती रही। मैंने उसे एक

एक बार प्यार से डांटा था, नीलूफर तुम किसी फरिश्ता सिफत आदमी की तलाश में यूं ही पूरी जिंदगी गुजार दोगी। वो एक लम्हे को मुस्कुराई और फलसफियाना अंदाज में बोली, डियर किसी नापसंदीदा आदमी के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि पसंदीदा आदमी की तलाश में जिंदगी गुजार दी जाए। फिर उसने बड़े एतमाद से कहा, अरशद अगर मैं अपने तौर पर सही हूं तो मुझे वो जरूर मिलेगा। और अब इस बात से 8 बरस बाद जब मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मुंबई से लौटा हूं तो भाईजान और ताहिरा भाभी ने मुझे उसके ब्याह की इत्तला दी है। ताहिरा भाभी ने अफसुदगी से कहा था, अरशद आपा बिल्कुल पागल हो गई हैं, हम सब उनसे नाराज हैं, हमारी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई वक़्त नहीं जिसे उन्होंने सर पर बिठा लिया है। और अरशद वो नीलूफर का शौहर एक अखबार के दफ्तर में मामूली सा नौकर है। भाईजान आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोले। और फिर भाईजान अपनी गाड़ी में मुझे नीलूफर के दरवाजे पर उतार गए थे। चूना पुती हुई सफ़ेद दीवारों और छोटे नीले गेट वाला घर जिस पर बोगनवेलिया की बेलें लिपटी हुई थीं, मैंने घंटी बजाई तो उसने खुद ही गेट खोला था। एक लम्हे को तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं, लेकिन फिर चीख पड़ी, ओ अरशद तुम मुंबई से कब आए? आज ही सुबह। मैंने उसे गौर से देखा, उसके बदन पे मामूली कपड़े मैले हो रहे थे। वो लड़की जो अपने कपड़ों पर एक ज़रा सा धब्बा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, अब अपने हुस्न नफासत पर सरापा धब्बा थी। उसके पेट की तरफ नज़र गई तो महसूस हुआ कि उसमें दूसरा वजूद भी मौजूद है। मैं सोच रहा था, क्या एक मामूली से बदसूरत आदमी के साथ रहकर यह हसीन लड़की सारी नफासत भूल गई है? आओ अरशद यहाँ इधर बैठ जाओ, मैं सालन भून रही थी, काम भी करती रहूँगी और तुमसे बातें भी करती रहूँगी। उसने कुर्सी खींच कर किचन के दरवाजे पर रख दी। मेरा मियाँ आते ही खाना मांगता है। वो किचन में खड़ी टमाटर और प्याज काटती रही और बोलती रही, अल्लाह कितनी खुशी हो रही है अरशद तुमको देख कर, कितने अरसे बाद आए हो, रेहाना कैसी हैं, बच्चों को साथ लेकर तो आए होगे, पहले ये बताओ तुमने मुझे शादी की इत्तला क्यों नहीं दी? मैंने ज़रा नाराज़ होकर कहा, इत्तला क्या देती, मुझे मालूम था बाकी लोगों की तरह तुम भी ये पसंद नहीं करोगे। तुमने ऐसा क्यों किया नीलूफर, आखिर उस शख्स में क्या है जिसने तुम्हें मुतासिर किया? कुछ तो है अरशद, वो इत्मीनान से बोली। क्या तुम्हें उससे मोहब्बत थी? मैंने लब दबा कर पूछा। मोहब्बत बिल्कुल नहीं, वो हंस पड़ी। फिर क्या देख कर तुमने उससे शादी की थी? मैंने झुंझला कर कहा, मोहब्बत तो अब हुई है अरशद, पहले तो मैं उससे मिली भी नहीं थी। बातें करते हुए मैंने देखा उसके नाजुक हसीन हाथ गंदे बर्तन धोते हुए कितने अजीब लग रहे थे। मैंने उसकी तरफ इशारा करके कहा, मगर तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था? पसंद पसंद कुछ नहीं होती अरशद, इंसान आदी हो जाए तो सब अच्छा लगने लगता है। क्या वो वाकई पागल हो गई है जैसा कि ताहिरा भाभी ने मुझसे कहा था? मुझे उकताहट सी होने लगी। मैंने उससे कहा, मैं अंदर बैठता हूँ, तुम बर्तन धोकर आ जाओ। ठीक है, मैं कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, तुम अंदर बैठो। उसके मकान के सिर्फ 2 कमरे थे, एक को उसने बेडरूम और दूसरे को डाइनिंग रूम बनाया हुआ था। मैं डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठा उसके कमरे का जायजा ले रहा था। सामने दीवार पर उसकी बनाई हुई पेंटिंग थी, खूबसूरत शानदार पेंटिंग, जिसे देखते हुए लम्हा भर को मैं सब कुछ भूल गया। नीलूफर की आवाज़ ने ही मुझे चौंकाया, वो कॉफ़ी की ट्रे हाथ में लिए खड़ी थी। कॉफ़ी पीते हुए मैंने पूछा, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये फैसला क्यों किया, खुद से थक कर या अपने घर वालों की चाह में? खुद से थक कर नहीं डियर, क्योंकि उन दिनों मेरे पास शादी के कई प्रपोजल्स थे, 2 बिजनेसमैन, 1 डॉक्टर और 1 कंप्यूटर इंजीनियर था। मैं सबसे मिली थी लेकिन कोई मेरी पसंद का नहीं था। मैंने तंज के लहजे में पूछा, अपने शोहर की क्या चीज़ तुम्हें पसंद आई? अरे वो सारा ही मुझे पसंद है, जिसे तुम सब लोग बदसूरत कहते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी हंसी बड़ी खूबसूरत है, जब वो संजीदगी से सोचता है तो उसके माथे की लकीरें बहुत अच्छी लगती हैं, जब वो चलता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब वो सो जाता है तो ऐसा मासूम दिखाई देता है जैसे कोई फरिश्ता हो। सच बात यह है अरशद, वो अंदर से बहुत हसीन है, वो मुसलसल बोले जा रही थी। ताहिरा की शादी के बाद मम्मी की फिक्रों ने मुझे परेशान कर दिया। उन्हीं दिनों राजेंद्र भवन में मेरी तस्वीरों की नुमाइश हो रही थी, आदिल ने यह नुमाइश देखी थी, वहाँ मुझे भी देखा था। उसने मुझे ख़त लिखा, मैंने आपकी तस्वीरों की नुमाइश देखी, आपको भी देखा। मैं आमतौर पर इस तरह ख़त नहीं लिखता, लेकिन आपको और आपकी तस्वीरों को देखकर अंदर से यह ख्वाहिश हुई कि आपको ख़त लिखूँ।
پھر راجندر بھون کے ملازمین کے ذریعے مجھے اس کے کئی خطوط ملے. اس نے لکھا تھا, آپ فنکار ہیں نیلوفر, فنکار حسن پرست ہوتا ہے, لیکن اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتی, فنکار حساس بھی ہوتا ہے, اور ایک حساس فنکار کبھی کسی کا دل توڑنا گوارا نہیں کرتا. آپ بہت حساس

0: इस गजल के साथ ही आज का अदब नुमा प्रोग्राम अब खत्म होता है। हमें दीजिए इजाजत, आइंदा शुमारे तक खुदा हाफिज।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदब नुमा, पेश कर रही थी सबीहा फजल। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD रेडियो पर हमारी नशात का सिलसिला जारी है। लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी नगमे। आगाज राजा और रंक फिल्म के नगमे से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

लीजिए सुनिए, काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। मौसीकी चित्रगुप्त की।

दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। मौसीकी थी कल्याण जी आनंद जी की। और लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये नगमा। फिल्म है बारूद, मौसीकी खयाम की।

बारिश फिल्म का नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद चितलकर की आवाज़ों में। और जब सुनिए शरारत फिल्म का नगमा शंकर जयकिशन की मौसीकी में, लता मंगेशकर का गाया हुआ।

किसके लिए बेकरार गोरी, आज तेरा प्यार किसके लिए बेकरार गोरी, आज तेरा प्यार दिल में जादू।

कुल कचोर फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये नगमा। फिल्म है घर की लाज, मौसीकी रवि की।

0: समय के साथ ही फिल्मी मौसीकी का यह प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के जेर एहतमाम एक लॉन्ग मार्च के दौरान कम से कम 20 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए। जनूबी जापान में 7.1 शिद्दत का जलजला आया, महकमे ने सुनामी की वार्निंग जारी की है। इसराइली वजीर अजम बिन्यामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की गरज से आज वाशिंगटन पहुंच गए हैं। एयर इंडिया ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब को 27 आलमी मकामात से जोड़ने वाले इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का आगाज किया है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के जेर एहतमाम एक लॉन्ग मार्च के दौरान कम से कम 20 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है, जिसके सबब मरने वालों की तादाद में इजाफा होने का खदशा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर JAAC ने कहा कि लॉन्ग मार्च के काफिले रावलकोट पहुंच गए हैं। तंजीम ने यह भी कहा कि मरने वाले 19 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। JAAC और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बातचीत मुबैना तौर पर नाकाम हो जाने के बाद इस लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया गया है। JAAC ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से पुरमन एहतजाजियों के खिलाफ गोली बारूद और ताकत के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है और अक्वामे मुत्तहिदा इंसानी हकूक से मुतालिक बैन अल-अक्वामी तंजीमों और जमहूरी हुकूमतों से अपील की है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में हालिया दिनों में एहतजाजी मुजाहरों में तेजी आ गई है। पूरे खत्ते में लोगों की आमदोरफ्त और मवासलाती राबतों पर भी बंदिशें आयद कर दी गई हैं, जबकि कर्फ्यू जैसे इकदाम किए जा रहे हैं और इंटरनेट नीज टेली मवासलात खिदमत मअतल कर दी गई हैं। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरो स्पेस के बानी पवन चंदाना और नागा भारत डाका के साथ गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि उनकी बातचीत में विक्रम वन की कामयाबी नीज कई दीगर दिलचस्प मौजूदात पर खास तौर से तबादला ख्याल किया गया। वजीर अजम ने इस कंपनी के दोनों बानी अफराद के सफर और मुस्तकबिल के उनके मनसूबों के बारे में वाकफियत हासिल करने के बाद मुसर्रत का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तवानाई जोश और मुस्बत अंदाज फिक्र से भारत के खलाई शोबे के प्राइवेट इको निज़ाम के मुतालिक जज्बे की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम के तई नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। वजीर अजम ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में भी विक्रम वन की कामयाबी की सताइश की थी। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल के आगाज के साथ पंजाब का राबता शिमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 मकाम से कायम हो गया है। अमृतसर से रोजाना 2 इजी कनेक्ट परवाजें रवाना होंगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा कि अमृतसर शिमाली भारत के लिए बैन अल-अक़वामी गेटवे बन जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत बहुत से इलाके अमृतसर के जरिए मुंसलिक होंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने पीचिंग में चीन के नायब वजीर खारजा हुआ चुनयिंग से मुलाकात की और बामी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। जनाब मिश्री ने इस नजरिए को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया कि भारत और चीन साझेदार मुल्क हैं और तजारती और इकतसादी राबतों में भामी तौर पर मुफीद नतीजों के जरिए एक दूसरे के लिए मौके दस्तियाब करा सकते हैं। चीन में भारतीय सफारतखाने के मुताबिक दोनों अहदेदारों ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने की अहमियत को तस्लीम किया। इससे कबल जनाब मिश्री ने पीचिंग में चीन की पीपल्स सियासी सलाहकार कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होंग लियान के साथ अपनी मीटिंग के दौरान सियासी और आवाम से आवाम के राबतों की सतह पर भारत और चीन के दरमियान बाहमी तबादलों को वसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में चीन में भारत के सफीर विक्रम दुराय स्वामी भी मौजूद

0: थे। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। इसराइली वजीर अजम बिन्यामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की गरज से आज वाशिंगटन पहुंच गए हैं। जनाब ट्रंप के दूसरी मुद्दत के लिए अमरीकी सदर मुंतखब होने के बाद से दोनों लीडरों के दरमियान ये आठवीं मुलाकात होगी। अपने बयान में इसराइली वजीर अजम ने कहा कि उन्होंने किसी भी बैन अलावामी लीडर के मुकाबले अमरीकी सदर से ज्यादा मरतबा मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा एजेंडे के सभी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसमें ईरान के मामले को अव्वलीन तरजीह हासिल होगी। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में साइबर जराइम मामलों में E0 FIR दर्ज करने का निजाम शुरू किया है। उमूर दाखिला के वजीर मुमलकत बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है ताकि वो साइबर जराइम मामलों, खासतौर से साइबर माली धोखाधड़ी मामले में E0 FIR दर्ज कर सकें। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये मालूमात फराहम करते हुए वजीर अजम ने कहा कि मरकज मुतासरीन की मदद के लिए आसाम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने हरेक की हिफाजत और खुशहाली के लिए दुआ भी की। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुजाहरा करने वाले उन तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने हुकाम से यह भी कहा है कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर हालिया मुलगिर मुजाहरों से मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद को भी महफूज रखें। अदालत ने यह भी कहा कि पिछले हफ्ते तलबा के मुजाहरों के दौरान तलबा और पुलिस अफसरान के जख्मी होने के इल्जाम की एक शफाफ और आजादाना तफ्तीश कराए जाने की जरूरत है। दरखास्तें की समाप्त करते हुए जिनमें मुजाहरों के दौरान पुलिस का मुबैना तौर पर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी हिदायत जारी की है। जनूबी जापान में आज एक ताकतवर जलजला आया। जापान के महकमा मौसमियात ने कहा है कि कुमामोटो खित्ते में आज सहपैर 7.1 शिद्दत का जलजला आया। महकमे ने बोहरा अरियक और बोहरा यासुरो के साहली इलाकों के लिए सुनामी की वार्निंग जारी की है। दूसरी जानिब इस ताकतवर जलजले के बाद खित्ते में सभी ट्रेन खिदमत मुअत्तल कर दी गई हैं। दौलत मुश्तका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में जारी 9.81 मीटर की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खवातीन शॉटपुट F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इस कामयाबी के साथ ही शर्मिला दौलत मुश्तका खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली पैरा एथलीट बन गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेलों में शर्मिला धनकड़ के सोने का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की तरफ से पैरा एथलीट्स में पहली बार सोने का तमगा हासिल करके शर्मिला ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शर्मिला धनकड़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके जज्बे ने आलमी सतह पर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। सदर जमहूरिया ने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर सर्वेश अनिल कुशारे को भी मुबारकबाद पेश की है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के जेर एहतमाम एक लॉन्ग मार्च के दौरान कम अज कम 20 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए। जनूबी जापान में 7.1 शिद्दत का जलजला आया। महकमे मौसमियात ने सुनामी की वार्निंग जारी की है। इसराइली वजीर अजम बिन्यामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की गरज से आज वाशिंगटन पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर आप हमारी नशरियात सुन रहे थे। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर।

0: पर नमिंदुक देखे न पता छचिन मेनली ज्यादातर पो हिस पिंचो मता खुए छाती गुले नमिंदुक या खुए स्नमचो लिशन पो शिशे गते आइनिक जग नते के लास्पा छिन या खुआ स्कत बिंग मचो छिन नता छाना दुई कर रेस्पिरेशन डुलिन नमिंदुक दो के पता छचिन शुक्रिया
1: Redeluxi hago der entity de program bringen jut bin medium wave to can use bin kilohertz medium wave to can use bin kilohertz dan fm channel ge share ye chik megahertz ka du akashwani kar klin kasta balti ya lori gente sin mazat sabas na lagen mazat mahmud abdulis katenu di lula

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक

0: सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानवाधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोंग में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: rangi businessun laske tangmi fia lenchik akashwani roks yanti chonglenun lokalin ya fayuli thokikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना।
1: हाँ।
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।

0: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: हेलो,
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: میڈیم ویبز نے فیم چینل کا دیو آکاش وانی کر کے لین کسر تال لدخ سیلو رنگن مزد ساوسن لنگن مزد سرین چورل نف پانس کرتنو دیلو لہا

आकाशवाणी करगिल कना सगेत पोनिफिया सगेत प्रोग्राम प्रचुपा ng सजात हुसैन यंग सेचि गंतंग यंग बोस का थुक चेन्यो नि चोसना यंग तंग मिमांस गंग मा जुन सलाम पु फ्रद मचन संशिक कासंगन कानून जर्बिंग रेसिका ng ते सगेत प्रोग्राम मुनानो सोमास पेरा रे कुरे योंग मत दिनि जपियाना यंग सोमास पेरे कुरे योंग सेट दिनि प्रोग्राम पियानो सग बतसना ला वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे स्कोरला स्पेरारिक देजुकना यंता सुपेक टिसेक फ्रचुगेट कासंगन कानून नतेस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जरना दिजकपो लोबिंग रेसिका जुलाई जे 28 ला मल लख्यों मचुक यंग दिजकपो मल लख्यों में तोनपु द्याविंचु की नति दिर गैस्ट्रिक हिंदुस्तान यंग दोना दि सतोक पिका चामचे नतांगा मिमांस दुख पदना दोन ला हेपेटाइटिस जरबी नति स्कोरला हागो तंचस इनचुक यंग दिजकपो मल लख्यों जरे गोजुक छे स्ट्रोलपो डॉक्टर बरूच बलैबैक जरखनपो इंसुक यंग खुस केजक पिका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जरे मल्लख मचुक डॉक्टर बरूच पुसिन मिंजरना डॉक्टर बरूच जरबी दी शख्सियत पुस हेपेटाइटिस

मीडियम वेज एफएम चैनल का जो आकाशवाणी करगिलिन कस्ता ओडियन फीचर सिंगन मजद मा बसत पुरियन फीचर सिंगन मजद करगिली खक्चन तारीखी मकामात

0: पुरिक यानी जिले करगिली युलुन्यांग सुक्सखान म्यून दुनियाए लोकसो युलुन्यांग नुकना मिर्गुतुन योंसे कुले कुला रीनाज गंग थांगुन रत बसे यांग ग्रोकपो न्यांग ना छुफिंग से सुक्स पसंग जरेत पुरिक यांग दी मिर्गुतुन नाम योंस्पिन जर बिस्कोला दरंग सखपा सहिर तक्सपेक मचा इंचु अम्मा दी तारीख दानुनिस दुनमी नमजयांग पुरी की म्यूनी दुगजो लांजो दोना सेगांग पोगाचुग अस्प्राल बतपिन दो निस्कोला सल्फो बसे इज्बरिसेयत
1: खोंग इस बस पी लसुनी शजदे का पुरी दिनसे मंजरे आमियां योंसियत कि बर्तानिया अमेरिका जर्मनी ना अटली दुनियानुना म्यून पुरी की फेस्पा युलुन लालता थगरिंग युलुन्यानुना स्कोम सिंचिक योंहत ता मुख्तसर पो दियाओ इन जरत की करगी लिलते मिंगबिंग मलसाउन गाओ इन नती बदकस्मती का दी मलसाउन चांस तक्सनेक लुसे थोमामेत अम्मा डाउन इन जरिन दुनी गोपोरिक लुस

उधर राज्य सभा अनुगंग द्यार मंग पे का हिलिंग हलांग सोंग से आयवानी लसुन गिमी तु सुद ये सप मुल्तवी बार को सिन यूटी लदासी लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनोद कुमार सक्सेना द्रिंग पब्लिक लाइब्रेरी और दुंचू मीमांसी में का तंसिन जिले कारगिल ला सुमचू सोगा यांग जिले ले पब्लिक लाइब्रेरी सुमचू सोगा युतेन कौन टी एच जी ब्लॉक कारगिली ट्रिस्पोन ला पब्लिक लाइब्रेरी चिरी गुजुक बसिन दी तकरीबन हिल काउंसिल कारगिली गोबा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखो ने संघ हकलन स्पिन दी पब्लिक लाइब्रेरी यूनियन हीटिंग ए ग्रल कंप्यूटर शुकबू जकपी अलमारी दुना फ्रून ला लुक्सो इम्तिहाना तुनियन खकलन में ग्रलिफिया ओशन मलसाउन युतिन लेफ्टिनेंट गवर्नर खुरी खिताब पेंग लाइब्रेरी शेसी लुंगपू यरलख्यों मिफिया गोमा गोम्बाउ इंजस यंग फ्रूनिस हम्बना यंबो दी लाइब्रेरी नंग खाकलेने शेसी उत्पू अशिबार गुसुक जरिन भारतीय जनता पार्टी रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी दिरिंग जरीन एनडीए पार्लिमानी पार्टी ग्रप्सपिंग अरकान पार्लियामेंट सगा लुखसोर यस्त्रितुन्नंगंबो भारती छोंगलेनी स्कोरी सोमाजुस्तावनी स्कोरियंग तक्सपा छचुकसेन पार्लियामेंट आहत्यांग नमनेगारुन्नंगंबो ग्रहिन बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी सिरदियंगमा बसित सियासी पार्टी गंगमा सरकारी ग्रलिका मल्ला ख्योंखन इम्तिहानात सगंग गैर मुनसिफाना जुस्तावने का जगस्तंग मिफिया सना लोस्तुंग निशूर सजबी कानून पंग लुगजगिर ख्यों में बिल पे का लोकसभा बहस बचना ओशन जुस्ते का रुख बोक दिया बरें बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट स्वाति मालीवालिस पेपर लीग लसुनी कारगिल खक पंजाबी वजीर तालीम इस्तीफा तंगमर गुसुक जरीन कौमी जमहूरी इतिहाद एनडीए पार्लिमानी पार्टी लसुनी स्कोरी हफ्ता बरी बे ग्रप्सपू दिरिंग मोतुका पार्लियामेंट हाउसिंग रल बस्युत पिन दी ग्रस्पेंग वजीर अजम नरेंद्र मोदी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह वजीर दिफा राजनाथ सिंह दुना ए रहनुमा निज खकलन स्पिन दी ग्रप्सपू अंगार बिंगरेसी मल्ला ख्योंगमत देफिया मंगल मिलन मिंगा यकसियोतिन दि ग्रप्स पे तुनगु एन डी ए चिकुत जरिस तनमाउ इन त्रिनेमोली कना लोकसवा युखन अरकान पार्लियामेंट उनसंग दि ग्रप्स पंग खकलन स्पिन दिल जे निशोर सख्शी का मल्ला ख्योंस खनी ग्रप्स पंग पेपर लीग यशमंग पे का सियासी पार्टी गंगमा लोकसे फ्रलुक्स बार गुसुक जरीन वजीर अजम नरेंद्र मोदीज दुनमा जगुन नीट इम्तिहानी पेपर लीग यशमंग पे का जगस्तंग मिफिया सख लोकसे फ्रलुक्स बाऊ खकचन युजिस वजीर अजम नरेंद्र मोदी दिरिंग रियल खक आसामी अरकान पार्लियामेंट नुन्नांगो थे रियल खक पे लुकसो मलसान युकन छुलोगुनी स्त्रोलिका फोखानी दोखारुनी स्कोरी तकसपा बसिन सोशल मीडिया पोस्ट की स्त्रोलिका वजीर अजम जरीन मरकजी हुकूमती शोसना दोखर फोखानुनी रुखसीफिया रियल खक आसामी हुकूमत नंगम्बो लखथुत बसे लजबत जरीन खोंग इस मीमांस गंगमा स्ट्रुंग लुक्सना तत्कार गमेफिया दुआ बसिन अमरजरी श्री गुरु रामदास जी बैन अलावा हवाई अड्डे कना दिरिंग एयर इंडियाज इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल ली गुजुक बसिन पंजाब नंगयम्बो यूरोप शुमाली अमरीका दुना ऑस्ट्रेलिया मलसांग शूर सब्दुन थुतिन शहरी हवाबाजी वजीर के राम मोहन नायडू जरीन अमृतसर शुमाली भारत दिफिया बैन अलावा थोगी गेट वेकल दन इन पंजाब जम्मू कश्मीर दुना हिमाचल प्रदेश नंगयम्बो अमृतसर थुतपी छोस्त्रोलचुक सोंसत जंसकार लगमाजबी डुलचा इनखन सोलर ट्रेनिंग वर्कशापू दिरिंग नफलगा गुजुक सोंसिन दी वर्कशापू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जंसकार न ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन लखथुदिका मल्ला ख्योंसिन दी वर्कशापेंग जंसकार जिले डिप्टी कमिश्नर रोमकार तान फेस्पाडुन फो यंग सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रिगजिन समदुप रिंचंडुन फेजोस्ते का खाकलिन स्पिन दी वक्ला फेस्पाडुन फोज मीमांग सुनंगम बोग्रागन चिक शेल सबिनोत खन शूनला सोलर एनर्जी लुंगपेंग खुंती लगा हुनरुन लिनमी लेने अशिबे दू छो मौके इंजस दी वर्कशॉप मंदा सुमचू सुगस खकलन हुकूमत इस पेने और चुपाना निशुपा नोटन प्लास्टिक चोसे गुजुक बेफिया भारतीय रिजर्व बैंक चोसना तंसियत खनी तजवीज पे कर रन लुक्स बसत लोकसभा त्रिसोचिगी इस ब्रिसेलन जोगिन खजाने वजीर

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए।

0: एलजी ने कहा कि रोजगार मेले नौजवानों की तवक्कात को पूरा करने, उन्हें तरक्की के ज्यादा से ज्यादा मौके दस्तियाब कराने और कौम का मुस्तकबिल संवारने के जिम्मे में एक अहम कदम है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस तरह के मौके से इस्तेफादा करके जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। एलजी ने कहा कि कारखानादारी में नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ना एक खुशाइंद बात है।
1: जब योग्य नौजवान और संभावनाओं से भरी इंडस्ट्री एक ही छत के नीचे मिलते हैं, तब नए जम्मू कश्मीर की नींव और मजबूत होती है। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से, नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि आप केवल नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवार नहीं हैं, आप भारत के भविष्य के निर्माता भी हैं। आपके हाथों में केवल अपना करियर नहीं बल्कि देश के विकास की दिशा भी सुरक्षित होने वाली है। आप स्किल इंडिया की शक्ति हैं, डिजिटल इंडिया की पहचान है और आत्मनिर्भर भारत के सच्चे वाहक भी हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी कंपनीज के प्रतिनिधिगण से भी कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी केवल योग्य वर्कफोर्स का चयन करना नहीं है, आपको नौजवानों का मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और सहयोगी बनने की जरूरत है। यदि इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर मिलकर काम करें तो ऐसा वातावरण तैयार किया जा सकता है जहां ज्ञान और अनुभव एक दूसरे को सशक्त बना सकते हैं तथा इनोवेशन और रोजगार के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं।
0: इस बीच वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस रोजगार मेले से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने नौजवानों के लिए रोजगार के नित नए मौके फराहम करने और इन मौके को वसत देने के अपने सरकार के अजम को दोहराया। उन्होंने कहा कि अगरचि सरकारी नौकरियां ही बेरोजगारी का वाहिद हल नहीं है, ताहम हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह प्राइवेट सेक्टर में नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा वसाइल पैदा करे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सन्नत व तिजारत और कारखानादारी इस सिमत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गनीवन कंगन गांधरबल में आज अलसुबह श्री अमरनाथ जी यात्रा से भरी एक गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में दर्शन करके लौट रहे 39 यात्री जख्मी हुए। हादसे के फौरन बाद बचाव कार्रवाई शुरू की गई और जख्मियों को पहले कंगन अस्पताल और बाद में सिक्किम सोरा मुंतकिल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए जख्मी यात्रियों को फराहम की जा रही तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि वह जख्मी यात्रियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करें। एलजी और वजीर आला ने जख्मियों की तेजतर सेहतियाबी के लिए दुआ की। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सिक्किम अस्पताल का दौरा करके वहां जख्मी यात्रियों की आयादत की और उन्हें दी जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। एलजी ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि वह जख्मियों को आला मयार की तिब्बी सहूलियात दस्तियाब कराएं। उन्होंने सीनियर अफसरों को भी हिदायत दी कि वह यात्रियों को तमाम तर मदद दस्तियाब रखें और सेहतियाब होने के बाद घरों के लिए यात्रियों की महफूज रवानगी के लिए तरजीही बुनियादों पर इंतजाम करें। इधर वजीर सेहत सकीना ऐतू ने भी आज वजीर आला की हिदायत पर सिक्किम्स का दौरा किया और वहां जख्मी यात्रियों की खैरवाफियत दरियाफ्त की। उन्होंने वहां जख्मियों और उनके तीमारदारों के साथ बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात के साथ साथ दीगर इमदाद भी फराहम करेगी। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते खुशअसलूबी से जारी है और अब तक मजमुई तौर 4.5 लाख यात्रियों ने गुफा में दर्शन किए हैं। आज 7,689 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी दी। पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम जारी है, जिसके चलते इस रूट से यात्रा आरजी तौर पर बंद है। इसी बीच आज भगवती नगर जम्मू के बुनियादी कैंप से 3,029 यात्रियों पर मुश्तमिल 21वां काफिला वादी पहुंचा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में आला सतह की एक मीटिंग के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तमाम महकमों को हिदायत दी कि वह दस्तियाब रकूमात के बरवक्त और मुनसिफाना तसरुप को यकीनी बनाते हुए बुनियादी ढांचे को तरक्की दें, नीज अवामी खिदमात और इक्तसादी तरक्की को तकवियत बख्शें।

0: वज़ीर-आला ने रकूमात की दस्तियाबी के बावजूद इसे सरफ न करने को नाअहलियत से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर और जम्मू में अभी तरक्याती कामों के लिए काफी वक्त मौजूद है, लिहाजा तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंजूर किए गए प्रोजेक्टों पर फौरी तौर से काम शुरू किया जाना चाहिए। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू के अलावा मुख्तलिफ महकमों के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में विमेन्स शॉटपुट F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीतने के लिए शर्मिला धनकर को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि इस कामयाबी से कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स गोल्ड जीतने का भारत का दो दहाई तवील इंतजार खत्म हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शर्मिला धनकर को सोने का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि पैरा एथलेटिक्स में इस खिलाड़ी की बेमिसाल कारकर्दगी ने पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। एलजी ने इस खिलाड़ी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन एहतजाजी तलबा की रिहाई के अहकाम सादर किए जिनकी उम्र 18 बरस से कम है और जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अदालत उज़मा ने आज हालिया एहतजाज के दौरान पुलिस फोर्स के मुबैना ज्यादा इस्तेमाल से मुतल्लिक अर्जदाश्तों की सुनवाई करते हुए कई अबूरी हिदायत जारी की। चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और वी मोहाना पर मुश्तमिल बेंच ने हुक्काम को हिदायत दी कि वह नीट पेपर लीक मामले पर हालिया कौमी सतह के एहतजाज से मुतल्लिक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद महफूज रखें। नीट मामले को लेकर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई को लेकर हिजब इख्तलाफ के शोरगुल के पेश नजर राज्यसभा की कार्रवाई आज पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। पहले इल्तवा के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो एमएसएमई के मरकजी वजीर जतिन राम मांझी ने एमएसएमई डेवलपमेंट तरमीमी बिल 2026 पेश की। इस दौरान हिजब इख्तलाफ के अरकान ने नारेबाजी शुरू की जिसके बाद डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज हेपेटाइटिस की रोकथाम का आलमी दिन है। इस दिन का मकसद जिगर की बीमारी से मुतलिक बेदारी पैदा करना और हेपेटाइटिस की सूरत में एहतियात और इलाज से मुतलिक जानकारी आम करना है। आज के दिन की मुनासबत से जम्मू कश्मीर में भी कई बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद हुए। इस दिन की अहमियत के हवाले से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में गैस्ट्रोएंटोलॉजी शोबे के सरबरा मुश्ताक अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ती है अबाउट द हेपेटाइटिस। इस बारे में अवेयरनेस इनको यही है कि सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर जो होना चाहिए दैट शुड बी सेफ एंड पोर्टेबल, उससे ये जो हेपेटाइटिस ए एंड डी दैट कैन बी प्रिवेंटेड। इन एडिशन टू दैट और दो वायरसेस हैं जैसे बी एंड सी, पेरेंटल ट्रांसमिशन होता है यानी कि कंटेमिनेटेड नीडल्स होंगी, कंटेमिनेटेड ब्लड होगा तो उससे हो जाता है, इसमें स्पेशली ड्रग एडिक्ट्स में होता है। सो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हेपेटाइटिस किसी को हो जाएगा, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, इफ इट इज नॉट रिकॉग्नाइज प्रॉपरली, इट कैन लीड टू सीवियर हेपेटाइटिस दैट कैन रिजल्ट इन लिवर फेलियर। तो यही मकसद है कि लोगों को इसका अवेयरनेस होना चाहिए कि हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर इन्फ्लेमेशन, मेनली वायरस होते हैं इसमें ज्यादातर ए एंड ई जो प्रिवेंट हो सकते हैं।
0: ज़िराअत और देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार से मुख्तलिफ वफूद और अफराद मुलाकी हुए और उन्हें अपने अपने मसाइल व तरक्याती जरूरियात से आगाह किया। वजीर मौसूफ ने उनके मसाइल गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलात पर तरजीही बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। आज कुदरती वसाइल को तहफ़ देने से मुतल आलमी दिन यानि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन दिन है। आज के दिन पूरी दुनिया में हवा, जमीन और पानी जैसे अहम कुदरती वसाइल को तहफ़ देने और उन्हें आइंदा नस्लों के लिए बचाने से मुतलिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाता है। इस साल इस दिन की अहमियत इस लिहाज से भी बढ़ जाती है क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज के मुताबिक आज की तारीख में 44,000 से जायद अकसाम के हैवानात और पेड़ पौधों को खतरात लाहक हैं। इस दिन की अहमियत के बारे में स्कॉस्ट कश्मीर में बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज डिवीजन के प्रोफेसर और सदर और मारूफ माहिर माहौलियात डॉक्टर जावेद इकबाल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: इसका मकसद कुदरती वसाइल जो हमारे हैं, जंगलात है, जंगली हयात है, आबी जखायर हैं और हयात

0: कमजोर बना चुका है। इसी तरह जंगलात की कटाई ने पहाड़ों की कुदरती मजबूती को कमजोर कर दिया है। दरख्त सिर्फ ऑक्सीजन ही फराहम नहीं करते बल्कि मिट्टी को बांध कर रखते हैं। जब यह कुदरती हिफाजती हिसार खत्म होता है तो बारिश के दौरान लैंडस्लाइड, मलबा गिरने और जमीनी कटाव के इम्कान कई गुना बढ़ जाते हैं। इसका बराह रास्त असर कौमी शाहराओं, दही राबता सड़कों, बिजली के निजाम और सियाहती सरगर्मियों पर पड़ता है। मौसमियाती तब्दीली ने इस खतरे को मजीद पेचीदा बना दिया है। आलमी दर्ज हरारत में इजाफे के बायस शदीद बारिश के वाकत ज्यादा शिद्दत और गैर मुतवक्का अंदाज में सामने आ रहे हैं। हिमालयी खत्ता, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल है, दुनिया के हसास तरीन माहौलियाती इलाकों में शुमार होता है। अगर तरक्की और माहौल के दरमियान तवाजुन बरकरार न रखा गया तो मुस्तकबिल में ऐसे वाकात मजीद बढ़ सकते हैं। अगर मौजूदा तर्ज अमल तब्दील न हुआ तो जम्मू कश्मीर को आइंदे बरसों में मुतादिद संगीन माहौलियाती खतरात का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें बार बार आने वाले शहरी सैलाब और फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, मिट्टी के तूदे गिरने और सड़कों की मुसलसल बंदिश, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के बायस पानी के बहाव में शदीद अदम तवाजुन, झीलों, दलदली इलाकों और कुदरती आबी जखायर का सुकड़ना, जेर जमीन पानी की सतह में मुसलसल कमी, गर्मी की लहरों और गैर मामूली दर्ज हरारत में इजाफा, जरई पैदावार में कमी और गजाई तहफ़ को खतरात, जंगलात में आग के बढ़ते हुए वाकत, हयातियाती तनवो और जंगली हयात को नाकाबिल तलाफी नुकसान, सियाहत, बागबानी और मकामी मईशत पर मनफी असरात, वबाई अमराज, आलूदा पानी और सेहत आमा के नए मसाइल, पहाड़ी इलाकों में बादल फटने जैसे शदीद मौसमी वाकात की बढ़ती हुई शिद्दत, ये तमाम खतरात किसी दौर के खदशात नहीं बल्कि इनमें से कई के आसार आज ही नुमाया हो रहे हैं। इस सूरत हाल में जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि हर शहरी, हर इदारे, हर तालीमी मरकज, हर मकामी इंतजामिया और हर समाजी तंजीम की भी है। माहौल का तहफ़ सिर्फ कवानीन से मुमकिन नहीं बल्कि इज्तिमाई शऊर, जिम्मेदाराना तर्ज जिंदगी और आवामी शिरकत से ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी, दरख्तों की शजरकारी, आबी जखायर की हिफाजत, कचरे की मुनासिब तलफी, बारिश के पानी को महफूज करने के मनसूबे और गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम ऐसे इकदाम हैं जो बड़े पैमाने पर मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। इसी के साथ हुकूमत को भी साइंसी बुनियादों पर शहरी मनसूबाबंदी, जदीद ड्रेनेज निजाम, खतरे से दो चार इलाकों की नक्शासाजी, सख्त तामीराती जवाबित, जंगलात के तहफ़ वेटलैंड्स की बहाली और मौसमियाती मवाफिकत पर मबनी तरक्याती पॉलिसियों को तरजीह देना होगी। तरक्की जरूरी होनी चाहिए मगर ऐसी तरक्की जो आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाए न कि इनके लिए नए बहरान पैदा करे। जमीन हमारी मुश्तरक अमानत है, इसकी हिफाजत सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर फर्द का अखलाकी, समाजी और कौमी फर्ज है। अगर हमने आज फितरत के साथ तवाजुन कायम कर लिया तो आने वाली नस्लें एक महफूज और सरसब्ज जम्मू कश्मीर की वारिस होंगी, वरना तारीख हमें इस नस्ल के तौर पर याद रखेगी जिसने तरक्की के नाम पर अपनी ही जमीन को खतरात के हवाले कर दिया। इसके साथ ही तबसरा खत्म हुआ, इजाजत दें, शब बखैर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृहमंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं

उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथी और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि यह ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और

वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है। मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि
एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा।

श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

Midiway 834 kHz, Midiway 1584 kHz के अलावा FM चैनल 100.1 MHz पर ये आकाशवाणी करके लाया है। पेश खिदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

फौजी भाइयों के लिए अपना मनपसंद प्रोग्राम यानी फौजी भाइयों के लिए लेकर हम फिर हाजिर खिदमत हैं। प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामईन को हमारी ओर से प्यार भरा आदाब।

अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल को तेजाब फिल्म में ये गीत बोल जावेद अख्तर के और तरस बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म बाजार में ये गीत बोल मीर तकी मीर के और तरस बनाई है खय्याम।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म बाजार में, ये गीत बोल मीर तकी मीर की और दर्ज बनाई थी खयाम ने। ये सुनते हैं भाभी फिल्म का एक गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमा निगार राजेंद्र किशन और मौसीकार हैं चित्रगुप्त।
1: सिक्का सिक्का सिक्का चलेगा पक्का पक्का।
2: सिक्कों की तवील उम्र होने के सबब एक ही कीमत के दर्जे के मुख्तलिफ सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें।
3: बैंकों को भी हिदायत है कि ग्राहकों से सिक्के फौरन कबूल करें।
1: सिक्का सिक्का सिक्का चलेगा पक्का पक्का।
2: RBI कहता है
3: जानकार बने चौकन्ने रहे।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म बेजू भावरा में ये गीत। गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार थे नौशाद। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को रात के अंधेरी में फिल्म से ये नगमा। नगमा निगार प्रेम धवन और मौसिकार हैं प्रेम।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को रात के अंधेरी में फिल्म से ये गीत। आइए सुनते हैं दिल दिया दर्द लिया फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शकील बदायूनी के इस नगमे को संगीत से सजाया है नौशाद ने।

0: अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए मीडियम वेव्स और एफएम चैनलों पर, यह आकाशवाणी करगिल है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतजार कीजिए।
1: मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
3: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
4: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
3: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
2: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और

0: वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
1: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
2: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
3: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। FIR वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
4: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडेसा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
4: ओडेसा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस

0: आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1% और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
1: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविन्द्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक

में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें पेपर लीक मामले में सख्त सजाएं और फास्टैग अदालतों के क़याम की तजवीज़ है। हुकूमत ने कहा है कि ये नया कानून तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के खातिर उसके अर्ज़ की अक्कासी करता है, जबकि अपोजिशन ने तालीमी निज़ाम में वसी तर इस्लाहात पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए कम उम्र तलबा की रिहाई का हुक्म दिया है। महाराष्ट्र, बिहार और आसाम की हुकूमतों ने तलबा के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहरीन पर फायरिंग के दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नाम नहाद असम्बल इंतखाबात उसके गैर कानूनी कब्जे को छुपाने के लिए मैदे दिखावा है। जून के महीने में सनअती पैदावार की शरह तरक्की पिछले 23 महीनों की बुलंदतरीन सतह 7.3% हो गई। ओडिशा में शदीद बारिश के सबब बड़े दरियाओं में तुगयानी आने की वजह से सैलाब की संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। अगले दो रोज के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ खत्ते के लिए इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिस टीम मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। ये बिल पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। ये कानून सख्त जुर्माने जैसे 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार करार दिए गए मुजरिमों की जायदाद जब्ती जैसे अहम इल्तिजामात का इजाफा करेगा। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के हालिया वाकयात का नोटिस लेते हुए फैसला किया कि इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। डीएमके के दयानिधि मारन ने बहस में हिस्सा लेते हुए दावा किया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट मरकजी मौजू है जो यकसा नहीं है और तलबा मुखालिफ है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने हुकूमत पर तलबा के मफादात के तहफ्फुज़ में नाकाम रहने और निजाम तालीम को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तलबा से किए गए वादों को पूरा करे। मोहतरमा गांधी ने मजीद कहा कि नौजवान निजाम तालीम में अपना एतमाद बहाल करने के लिए मुजाहरे कर रहे हैं और जवाबदेही तय करना चाहते थे। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बांसी स्वराज, टीडीपी के लाभू श्री कृष्णा, शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और दिगर अराकी ने पार्लियामेंट में बहस में हिस्सा लिया। राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के मुजाहरों के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के हंगामे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहली मरतबा मुलतवी होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई जब दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट तरमीम बिल 2026 को मुतारफ कराया। बिल के तारुफ के दौरान अपोजिशन अराकीन ने तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई पर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा आराई जारी रहने पर राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ हालिया मुल्कीर एहतजाज के दौरान तलबा और पुलिस अहलकारों के जख्मी होने के इल्जाम की मुकम्मल मुनसिफाना और गैर जानबदाराना तहकीकत जरूरी हैं। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे कम उम्र तलबा जिनका कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है उन्हें रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को हिदायत दी कि एहतजाज से मुतालिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद महफूज रखे जाएं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच उन दरखास्तों की समाअत कर रही थी जिनमें एहतजाज

आकाशवाणी रेडियो करगिल स्टेडियो सिना प्रोग्राम पुनर्गी मोथोरा बड़ा लाख छोमु छोहानुस चुने बड़े सजारे रारवी सिना प्रोग्राम कोंडिया ते कोन हा तो मुस जुगा सलाम थे बुजिम सयारे गजारवी सिना प्रोग्राम आकाशवाणी रेडियो करगिल जो हफ्ते जे दू लाख नशिर बोई बोजाऊं एक अदितो छक दजो दू गा बगाई जा तोने दुमो को प्रोग्राम अंगारो छक रातु के नौ बगाई जा आकाशवाणी करगिल जो नशिर थे बोजा तो सजार हजार भी छो कौन हाँ तो कनी दिशी यहाँ तो मुस अनी बस चमाट थे वो एम की छो शुरे बयात भय बयात हबसु सात बयात जाते वादा अन्य तुझो अनी गा मुसु दुआ थे वो जेम कि कौन है सजार हजार भी हाँ तो असने कनुगा तो छो शुरयार गा हबसु सात जिंदगी थे बजात सजार हजार भी अशो प्रोग्राम सिर अनी जहल छन कि आश बुटे मुठोर बेसु एक टॉपिक एक देहन सो टॉपिक है मोस्ट है बोन सो टॉपिक हन हेपेटाइटिस अथेन बीमारियों बार आर कि यानी हेपेटाइटिस बीमारी जे खन तो ने अनी बीमारी कनी हिसाब के जो ओई बोजें तो अनी बीमारी जो प्रोटेक्ट करना थे थ्योनी हिफाजत करना थे थ्योनी कना थे रक्षी बोजोनी है तो ने अनी बीमारी जो बचाए थ्योनी कार्यो जोक जोक थ्यो के हाँस बेसु खसूसन असने चुन बाल मुलायो बेसु अनी बीमारी हो कनिष्ठ रक्षार थ्योन जर जर कण से रसार थोन थे अनि बीमारी बार अशसुर टॉपिक दहन जू तो सजार हजार हुई मुस्तर रजी बुजेम की आशा सोई एक नाव मना चिके अन असो जो हो थे वलियास आकाशवाणी रेडियो करगिल स्टेडियो जा रोहन जनाब गुलजार हुसैन साहब तो तोने रो एजुकेशन डिपार्टमेंटस नलागा मुंसल खान तो रेसिस नलागा बेसु अनि बीमारी बार मुश्किल थे बुजेम के थे तो गुलजार साहब एक नोम लिखा तो मानू रोखन रोस अनि क्रोमोजा अनि एदारो जा या एजुकेशन एदारा बोनी या कनुगे एन जी ओ से बोनी या कनिगे मुती चीज़ एक बोनी रो हमगीर हमेशा तैयार बोईता अनाओ प्रोग्राम हो रोस शराकत है हिस्सा गीता रोस अवेयरनेस गदे बोझ तो असनी करगिल जा रोस अन्य अवेयरनेस प्रोग्राम मुझे हिस्सा गी चाहे स्कूल बोनी चाहे एन जी ओ कनिगा रे के जरिए से अगर हो थे वक्सा या घटा जा रोसे अनी प्रोग्राम उबारा जा अनाओ प्रोग्राम उबारा है खुसूसन सुकुली बाल मुला है रे या रेने माँ माल हो रे रोसे अनी सोबारा जो है रोसे अवेयरनेस दे बोझ रेनो रे रजी बोझ कि अनी प्रोग्राम अना अनी प्रोग्राम हो जरिए अना बीमारी हो कना चेरा छे होनी है कनी हिसाब पे के बेहोनी है कना थे अगर बीमारी बिल तो कनी हिसाब पे के मेडिसिन दवाई वगैरह या रबाटी वगैरह इस्तेमाल थी उन्होंने तो सजा रिटायर हुई मुस अवल रजी गास के ऐसा सुर एक टॉपिक एक देहन सो है हेपेटाइटिस हो रहा है एक जरूरी एक टॉपिक एक हन के थ्यून तो असनी करगी ले जा अनी बीमारी लायक लायक ओह बोझें तो अशनी बीमारियों बारा रश पूरी दुनिया तिश हर दिशी जा अवेयरनेस कैंपे हुई बोझा चाहे से बड़े इदारे बोनी कनीगा स्कूल बोनी कॉलेज बोनी या मेडिकल कैंपे पूरी दुनिया तिश अश अन बीमारी रोकथाम ही कार तो ने अगर बीमारी है तो से वो टेस्टे वगैरह थे मेडिकल कैंपे हुई सनी इलाज मुआवजे थे होगा चमाट थे बोझा तो सजार हजार हुई यानी हेपेटाइटिस थे बीमारी एक संगीन बीमारी एक बिल तो ने अनी बीमारी एक यूंग जा दिशी बोझी अनी बीमारियों असर तो ने इंसान यूंग जो है असनी जिसमें एक एक अजू एक बिल जो रो से यूंग से जोक थे बोझें असनो लेल साफ थे बोझें असनी खेस भाई हजम थे बोझें तो ने जिसमो तवानाई जखीरा थे ता नुकसानदेह अरोहनी मादे बुड़ो अखराजात बुड़ो खारिश थे कि लाई चमाट थे बोझें जबकि हेपेटाइटिस बीमारी जिगर मुतासर बोझ यानी कि यूंग मुतासर बोई बोझ तो ने अनी सी कारकर्दगी यानी कि अरोहनी मशीनरी कारकर्दगी जो से कमजोर थे बोझ सजार हजार भी अगर बर वक्त या वक्त जा अनी सी इलाज ने बिल तो अनी बीमारी से अनी यूंगी रे लाई नुकसान एक दे बोझ

मेसू पशी बणस लावला वा संते असने असनी ही कुई जा असने पेशेंटी ही लावे आनी करगिले जे इलाज ने वो कशरी गा दरो थे दिल्ली जा हरीबो जा मेसू पशी बणस आनी सी कार आनी बीमारी और अछो की कार मेसू मुछोर एक दामाते तुक थे वो जो क्या वजह हूं मेसू आनी रेडियो जरिए जा मेसू आश असनो एक्सपर्ट मनु रुकेगा वाले हंस तो निजे से मोड़ो जेगा मेसू अमल थे खुसूसन असने बाल मुलायो आनी बीमारी और अछो की चमाट थे वो जो किलाई जरूरत तो ने सजा रेडार हुई हेपेटाइटिस ही लाए इकसाम है तो खन जैसे जा हेपेटाइटिस ए हन हेपेटाइटिस बी हन हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस डी तो ने हेपेटाइटिस ई थे ने अन्य बीमारियां जो शामिल हन तो ने अन्य हेपेटाइटिस बी या सी थे ने लाई खतरनाक बीमारी बिल थे रजीब हो जा दस्टिमान से के थे उन तो अन्य लाई तवील और सा कड़क जिसमें जा सचिव हो जाए मगर असोई थे खबर ने सचिव हो जाए इंसान ठीक बो बे हूँ लेकिन पता नहीं उन्हीं से असर लाई छूते का सोई थे पता वही बोझें के थे उन तो से घटा जानी बीमारी वापस कंट्रोल बो के लाई मुश्किल वही बोझें असनी यूं सो घटा रख तो शुशी बोझें थे रजीब बोझा सरतान का दीगर पेचीदा बीमारियों सबब वही बोझें थे रजीब बोझा सजा रेडार हुई हेपेटाइटिस अमूमन जग वही बोझे थे ना अमूमन अच्छा को वही पी आलूदा वही पी या आलूदा या गंदा बाई खे या बाई इस्तेमाल थे तो या गंदगी है जगह जा बेसू कनिगा मतलब गोश्त हाइजीनिक ने थे सफाई ने थे बाई वही अनि सुजरिए अनि बीमारी बेन थे रजीब बोझा दस्टमान से नाकिस सफाई अच्छा कहती कि बाई खोनो या बई वॉशरूम या बाथरूम गेस तो बई सुहाती ने दो या खुसूसन बाढ़ से तो थे बोझा सफाई लाई रे थे बोझा खुसूसन आनी बीमारी चुन बाल मुलाए जा रोकथाम छोक के आवाजें चुन बाल मुलाए ली साफ सफाई अवल गा रजी गास आनी असनो एक्सपर्ट से पत्नी छुर रजी बुझी कि अनि बीमारी रटो के कार अनि बीमारी रे छोक के कार बेसु असने चुन बाल मुलाए जत्थो से लाई वक एहतियात थे बोझो के आवाजों तो न सजा रेडार भी अनि से बचाई बोरी कार साफ वो प्यों नो वजाऊं बाई साफ सफाई बेतुल खला साफ सफाई हाथ धोई बाई खोनो हाथ धोई अनि सब यमा बूढ़ी बूढ़ो जो लाई बक अनि बीमारी जो बचाई बो की सफाई हो लाई जरूरत हन असुई थे असने गोर रोजा असने आस पास असने इर्द गिर्द असने बाल मुलाए असने चूने बड़े बूढ़ो और बेसू अगर अनि बीमारी जो बचोक ते छुरियो हंस तो रचोक ते छुरियो हंस तो हेपेटाइटिस जो बीमारी जो तो बेसू सफाई हो लाई ख्याल छुरियो की जरूरत हन तो हेपेटाइटिस ए जो बचाव छो की कार वैक्सीन के दस्तियाब हैं थे रजीब हो जा तो भैंसू पशी बो कि असने स्कूल हो जा असने कॉलेज हो जा असने बाकी इदारे से गर मेडिकल कैंपे हुई बोझा गाम गाम हो जा तो अन्य वैक्सीन के थे बोझना तो सजा रेडार हुई हेपेटाइटिस बी असी ले ले जा जिस्मानी अन्य रुतबत हो जरिए जो मुंतकिल बोई बोझे इतना अन्य गैर महफूस एक तिबी आलात एक इस्तेमाल शुदा मेसू कनी की चीज़ इस्तेमाल नहीं छोक हुआ जी इतना जैसे कि सिरेंज वगैरह एक जो हुई तुमो की इस्तेमाल से तो कोते थे वो जिनुश के छो तो मेडिकल कनू का डॉक्टर एक से कनू का कंपाउंडर एक से इस्तेमाल थे वो इसे से असुई थे अचानक दिक्कत एक गनुश तो अन्य गैर महफूस एक बीमारी एक बिल के छो तो अनि सो जरिए जगह ले लो जरिए जगह वार पार वही बोझी थे रजी बोझा अनु जा रासीम वार पार वही बोझा थे रजी बोझा तो ने सजा रेडार हुई हेपेटाइटिस एक जो दुमो गेरे बोझो कि कार बैंसु टके गए तो तिबी मारा किसी हने अस्पताल ही हने तो ने अनि जरासीम में जो पाक आलाजात का इस्तेमाल थे बोझा बैंसु पशी का बोझोनस तो छोक गया हुआ जी अनि का जरूरी हन सजा रेडार हुई हेपेटाइटिस जो बचाई छो के कार जाति का इज्तिमाई सफाई लाई जरूरत हन तब अकीगा कोई का साफ शुरू होना जो इज्तिमाई रजास तुम गोश बा बाल मुलाए दरवा रो महल्ला बाई खेस बाई बोंड कून तमाम बुढ़िया ने इज्तिमाई जो बुझे छिलो खोई अनि बुढ़े तो अनि का साफ सुथरा छुरियो की लाई जरूरत हन तो ने साफ हो इस्तेमाल एक मुतवाजिन गिजाक का वजी बुझे महफूज तिबी तरीकों या अमल छो का वजी डॉक्टर रजे तो कनिगा बीमारी रे बिल से तो कम एक अनि से अभी सो अमल छो की जरूरत हन चमाट छो को जरूरत हन तो एक तो दूसरा लेल अगर आवाजलो दिशे में सु लेल दे बजोनास दिशे के जाए या पेशेंट करे तो अनु लेल के में सु आई थे ने दे बजो का वजी कैसे कोते तो मेडिकल कनिगा हॉस्पिटल है बोनी अनुमेज लेल चक थे बोझा कि अनु लेल कानू हूँ साफ हूँ धनुष थे तो अनि हेपेटाइटिस ओ बीमारी का अनु लेल जब मुंतकिल बो बजे थे रजीब बोझा अनु का बेसु टके दियो कि लाई जरूरत हन तो ने सजा रेडार हुई अवाम में मजा आनी हेपेटाइटिस बीमारियों हेपेटाइटिस बीमारियों आगाही पैदा थो की एक बड़ी जरूरत है खन ताकि बे असने अनि बीमारियों बार खबर नुश जाकोर बे सु रेडियो जरिए अनि पर जरी बोझ सजा रेडार हुई कि अनि बीमारी एक बड़ी बीमारी है खन अनि बीमारी एक खतरनाक बीमारी है खन अनि से अच्छो की लाए आसान तरीका खन ताकि असनी ओन ही नस्ल साफ सफाई जशत तो बी साफ सफाई ज छोरियस तो ओन ही नस्ल अनि बीमारियों जो बेसू बचाई थे छुरियो रठी छुरियो बोन
تو سزا رڈار ہوئی انی عوام جب ایسو ٹکے گیس تو ہیپیٹائٹس او بار آگاہی پیدا تھو کی تو انی بیماری جا کنٹرول یا قابو تھو کی کاری ایک اہم ضرورت ایک انی ہن کی لاوے جک انی بیماری علامات نے رشتے بجا تو

0: झूठे मुझसे गुलजार साहब के आनी थो मिष्टी थे रजीगा कि असोईत यानी हेपेटाइटिस बी जो या हेपेटाइटिस ए जो सी जो डी जो ईड़ा कहीं थे रजीगा की से अलावा दू अन्या सिम्टम्स असोईत की जो कना वो बे नहीं तो असोईत कना वो खबर बोना हो जी कना वो लेल बोना हो जी तो से मूछ गुर हो जो तो या सनो सिकिन असनो अनु चुम या अच्छे या जीप अनि बुरी गुरी वही बोली
1: गुरी
0: थे
1: बोलते
0: रजी का
1: हैं।
0: वो गुलजार साहब की तो जूते मुझ गुलजार साहब की मुसो दखन की असने कोंडेन तमाम सजार रजार उड़ से अनि प्रोग्राम इस जरिए जनोर का खबर बोनो हुआ जी की अनि बीमारी जोक जेक सिम्टम्स तो कहीं जेक वो बीमारी है नहीं तूने अनि से कना वो बेस हुशियार वो बेन हंस तूने अगर अन्य अन्य अन्य अन्य जय बुरी अगर सिम्टम्स असने जो डिमाज बिल तो या बाल या मुलाय या जारो खोरो के बिल तो गुलजार साहब से रजी
1: अच्छा
0: बोझूं कि मैं जो डॉक्टर लेगी रुजू छोड़ना हो जी अस्पताल हाजोना हो जी ताकि यानी बीमारी लाइलाज बीमारी एक ने बिलानी सी एकदम इलाज थे बोझों को जरूरत हन थे गुलजार साहब से रजी बोझन तो जूठ मुझ गुलजार साहब एक आनी एक बड़ो एक तू के छो तो तू एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ला सची हूँ
1: नमस्ते।
0: जू तो मुसानी एक असने बाल मुलाया हाँ जू तो बाल मुलाया तो बूढ़ो एक असनी जे एक बिलजू एक नियामत एक गविल असनी एक कौमी ओन यही एक पिलर एक मलब असनी मलब जे एक बिलजू असनो फ्यूचर भी बाल मुलाये असने तो आनिनो बेसु असनो समाज जा अन्याय बीमारी जो रठो के कार तुसे एक तो अकी आनी माँ माल हो रहे योग राज हूँ कि आनी बीमारी जो रही बाल मुलाये कना थे रचोक कहीं साहब ये परहेज एक ठोक क्या हुआ जी दुमो को कि स्कूल हो जा या कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल हो जा आनी बीमारी रठो के कार आना वो प्रोग्राम ही तो करे वही वो जहाँ दजू अगर बेना तो जो हिसाब है कही वही वो जहाँ आनी जा सक तफसील भी बोझू मेहरबानी
1: जो जैसे कि असो मैं यही जिक्र थे अनि हेपेटाइटिस बीमारियों बारे जा सद अनि एग ई ए जो की ई डखेंडे तो अनि
0: बिल्कुल
1: एग ई बीमारी जो है से सरमा अगर इंसान र पता बिल तो लाई इलाज लाई जे मुश्किल गन जो
0: मुश
1: आप
0: बिल्कुल
1: से
0: जी
1: सर अनसर जरूरी है तो से रेस्ट है खूब वोई पी
0: बिल्कुल
1: ओई मतलब डॉक्टर लिए थनी थोड़ा बहुत रे थे
0: इलाज
1: उसके
0: के
1: अलावा
0: अलावा
1: हेपेटाइटिस बी का सी रे जो दवाई वगैरह अवेलेबल हो वो भी
0: बिल्कुल
1: इस्तेमाल करते तो अनि बुढ़े मद्देनजर छोरे हुकूमत से जो अवेयरनेस प्रोग्राम हर तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स असने स्कूल जा ऑर्गेनाइज थे जो है जैसे जैसे कि बालो रे स्कूल जा मेडिकल टीमें भी हैं
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: ताकि उनका हेल्थ और हाइजीन चेक होनी
0: बिल्कुल जो
1: तो उस दौरान ने जो बामुलाई लिए टेस्टे थे ना ब्लड टेस्टे वगैरह गए थे ना कि बामुलाई सेहत का नहीं है मेंटली
0: अन्य
1: फिजिकली का
0: हेपेटाइटिस
1: नहीं
0: और
1: हाँ
0: टेस्टे का थे
1: हेपेटाइट
0: ना जो
1: बिल्कुल जो बिल्कुल थे ना
0: बिल्कुल
1: वो हुकूमत से मतलब हर इदारे रे मतलब इंस्ट्रक्शन दे हैं कि मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम्स और हेल्थ प्रोग्राम्स जो है हर स्कूल जा हर इदारे मतलब प्राइमरी तो ये हाई स्कूल हायर सेकेंडरी तक आम बेन जू
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: सदे बामुलाए अरे चेकअप थे अगर ज़रूरत है तो सेने माँ मालो अरे माँ मालो थ्रू डॉक्टर अगर से
0: इलाज थे अरे वो
1: इलाज
0: जा
1: होनी फायरा जो है
0: फायरा
1: मतलब कि
0: बिल्कुल जो
1: बता देते हैं कि यानी चीज़ है आंसर तुसे
0: अन्य
1: बला
0: इलाज
1: आनी
0: बिल्कुल
1: रेफर थे ना डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर थे ना मतलब
0: बिल्कुल जो
1: इसके अलावा भी मुझे बीमारी है नहीं सनोगा
0: बिल्कुल
1: जैसे कार्यो कैंप यहाँ
0: मियाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: सर अन्या बुरी चेक थे ना जो तो ज़रूरी बिल माँ मालो रे अन्या नो जो बा मुलायो एक रे के जो मतलब बा मुलायो छोन लानी डॉक्टरली बिजना जो है जो बा
0: बिल्कुल
1: मुलायो
0: बिल्कुल
1: बिजना
0: बिल्कुल
1: खोप बेनी की छोन ला बीमारी खजी टेस्ट छोन तुरे
0: बिल्कुल
1: आ चीज़ ने बिल जो टेस्ट है ज़रूरी बिल चाहे हेपेटाइटिस बोनी या मुझे बीमारी बोनी तो टेस्ट है रही टेस्टों हिसाब पे जा डॉक्टर लरी ट्रीटमेंट होने का जरूरी बिल
0: जरूरी है
1: ताकि उसके अलावा सबसे मेन तो बिल यू गो हेल्थ हाइजीनो ख्याल छोड़ने सफाईयों ख्याल छोड़ने
0: सफाई ख्याल छोड़ने
1: जितना
0: बिल्कुल
1: सफाई का
0: सबों
1: खान
0: को वही
1: भाई
0: प्रियत
1: साफ सुथरा छोड़िए
0: बिल्कुल
1: अच्छा गिजा खाइए तो अन्य बीमारी जो खुद ब खुद अनु
0: ठीक से
1: गिजा
0: ठीक
1: से ही मतलब फाइट थू जो जिस लड़ाई थू अन्य रोग जो इंसान सेफ थू
0: रचीजी सचेजी
1: बिल्कुल
0: सचेज
1: जो
0: बिल्कुल
1: तो
0: जो
1: अगर सफाई ने बिल तो अन्य सफाई ने बिल तो इंसान ने जो अन्य बीमारी बुरी से हमला थे नहीं
0: बिल्कुल
1: तो फिर इंसान रे मुश्किल बन रही है तो
0: बिल्कुल
1: अन्य चीज़ जो बचाई सचुन क्या जो सफाई
0: लाइफ
1: ज़रूरी
0: जरूरत
1: बिल
0: है
1: गोड़ सफाई किचनों सफाई वॉशरूमों सफाई बाल मुलाई ले छिलखोई हाथ मुँह नहाना अन्य चीज़ ही बेसिक चीज़ यानी बिल जो अन्य छेजन ज़रूरी अन्य छे हिसाब से बाल मुलाई हर बीमारी महफूज
0: सच्ची
1: सचुन
0: बोझ है
1: हूँ एक सेहतमंद जिसमें यही एक सेहतमंद दिमाग हूँ ना जो
0: से
1: रजिया
0: बिल्कुल जो
1: माहरीन से रजा कि अगर बाल सेहतमंद हों तो जैसे एक सेहतमंद जैसे दिमाग एक गौन हो सेहतमंद दिमाग बिल तो बाल तालीम हासिल होने की मुश्किल बोन एक
0: बोनस
1: बीमारी है मुबतला हूँ मानू रो सो तालीम करा जो
0: वही
1: वार
0: नहीं बिल्कुल
1: भी
0: जो
1: इससे कमजोरी शजें जनाब
0: बिल्कुल जो बिल्कुल मस जूठ मुस गुलजार साहब बस मुस थोखन लाओ आनी नहीं की बोझे तो आखिरी एक सवाल एक अनुहंजू की रजीगा की अनि बीमारी है जो रछो के कार्य का थो रजीगा की कना वो अनि बीमारी है नहीं वो जो वो भाई जो वो सफाई अनि बुरी थो अनि असने कोंडेन सजार बुड़ो रहे तफसीलन थे।

0: मिष्टी थे राजी गाजू। तो गुलदार साहब तुस अनि मोर राजी बोता कि अनि बीमारी जो लाइलाश बीमारी ने मिलते थो राजी गा, तो अनि बीमारी इलाज कनुग अस्पताल कानी के दिशी जहाँ ही देजू
1: जो बिल्कुल
0: अगर बिल तो
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल जी
1: आज अनु दौरा जा मतलब असनो जिले आ जगह कम कम अच्छे अच्छे
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: जी
1: हाँ
0: बिल्कुल जी
1: अच्छे अच्छे फैसिलिटीज़ हैं। तो बीमारियों हिसाब पे जा
0: बिल्कुल
1: बीमारियों इलाज बेनिजू
0: बिल्कुल
1: मतलब मुफ्त इलाज ही सहेगा मतलब
0: बिल्कुल जी
1: सरकारी अस्पताल हो जा अन्य बीमारियों बुढ़ो मुफ्त इलाज बेनी।
0: बिल्कुल जी
1: मगर कनी का बीमारी तब लाइलाज बेनी जब जैसो एक लेवल के जो खजीब हो जी दारो अवल अवला यही पता बिल तो अवला यही मनुरो से प्रोसीजर जो वही डॉक्टर फिल तो से बीमारी अचाक तुल भी नहीं सो इलाज
0: वही बोझ
1: बेनिजुया
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: सर जू थे मुस गुलजार साहब तो मुस आखिर या अने सवाल है कि कनी रजी बोझिम जो कि तू से असने कोते अने असने दरो थे सबक रजा बाल मुलाए हाँ दरो थे दरी ने हाँ जम्मे जहाँ कशरा हाँ दिल्ली जहाँ राजस्थान हाँ तो अनिनोर एक मैसेज एक जोक दे बोझिम जो कि अने बीमारी है गाना एक कनी का बीमारी और अशोक के कार्यों से जोक एकदम एक थे के जो रे गोर रहे दूर हाँ मले के दूर हाँ बस जनो रे तालीमी साथ साथ जनो रे जोक तुसे एक मैसेज एक दे बोझिम जो मेहरबानी
1: मी मैसेज यानी है जो कि बिल इंसान इंसानी अगर सेहत ठीक रहती तो
0: बिल्कुल सर
1: हर चीज़ इंसान रहा आसान बेनी। तो कौन है हाँ तो इंसान दुनिया तो कनु कौन है हाँ तो मैं जो इंसान रे अपनी सफाई और अपनी सेहत व ख्याल छोड़े छोरील वक्त से जे दूसरे को मिशन जो आसान बोनी है इस कोते स्नो मुल्क हिंदुस्तान ने जा करगिल थो जो आलूदा आबो हवा आलूदा
0: दरो ही
1: पानी धरो हैं
0: बिल्कुल जी
1: तो सदा जरूरी है इसने बाल बालो रे
0: मुला रे
1: मुलायो
0: सबक
1: रे
0: रजे रे
1: सर्रा कोई हाँ तो सबक
0: बिल्कुल
1: रज
0: जी
1: न करे
0: बिल्कुल जी
1: वैसे रिंदी हाइजीन जा ज्यादा
0: तवज्जो
1: ध्यान जो ना
0: देना
1: हो जी रिंदी बाई जजे से ध्यान जो ना हो जी वैसे वही बोनी बाई बोनी
0: साफ सुथरा पियोनो
1: साफ सुथरा खोनी नगा छुरी ना हो जू
0: बिल्कुल जी
1: से छुरी तो जेनर अगर बीमारी नहीं मिल तो रैसे नी चू हाँ फील्ड जा
0: कौन
1: कामयाबी
0: सबको
1: ढूंढल
0: थे
1: जो
0: मुझे
1: कम सबको थे भोजन अगर रे रेन्नी सेहत उस नल जाए बुरसाते वक्त से जा रे रेनो मकसद जा कामयाब बोन तो मकसद है कामयाब बोने का जो जरूरी है जो रस रेन्नी सेहतों ख्याल छोड़नी
0: सोचो कम
1: सेहतों बीमारियों जो दूर बहने कोशिश चुनी
0: बिल्कुल
1: बीमारियों दूर तब सचो ना जब से रेन्नी हेल्थ का हाइजीनो ख्याल
0: ख्याल
1: छोड़ें तभी जनो रे एक सेहतमंद जिसमें बोन हो जो तो रस
0: बिल्कुल
1: रस नो क्रो में जा ध्यान जोनी वार बोने हैं।
0: तो गुलजार साहब मुस्त जू थे मोस की थो थनो एक मूल्य हूँ खेण एक खलेता थोड़ा सो रानी खेण देगा मुस्त बड़े लाग जू थे मुझे मेहरबानी
1: शुक्रिया जाकिर साहब अनु प्रोग्राम में थो दावत दा से सर बहुत बहुत शुक्रिया आप
0: शुक्रिया सर तो अनु असलो असनो नोम लिखा तो एक एक्सपर्ट एक रो असलो की जनाब गुलजार हुसैन साहब तो रेसी रिसने एक शबो के मिष्टे मिष्टे मोजी तो कैसे कोंडेन सदार इरार वी बुडुडक फायरी गाओ तो सदार इरार री दखन की छो गुलजार साहब की रजा वो मोरो जा अमल थे वो जात के छन तो रो अनु एक्सपर्ट एक बिल तो अनि बार एड्रेस रे लाई खबर हन तो कोशिश यानी थे वो जो कहवा जी कि बेसु असने असनी सेहतु जी साथ साथ के असने बाल मुलायली सेहत होगा लाई ख्याल छोड़ो चमा ठो के वजी के छो तो असने बाल मुलाय अवल रजी गा गुलजार साहब की आश असने बाल मुलाय दरो थे रहा दरी ने असनी मलिक के जो असनी यानी करगिल जो दारो थे रहेगा आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ ड्यूटी हने तो रेनो रे बेसु माँ मालो से रजीब जो कहवा जी की रेनैनी बायो ख्याल छोड़ो कहवा जी रेनी सफायो ख्याल छोड़ो कहवा जी रेनो वो ख्याल छोड़ो कहवा जी ताकि कन्हाई के बीमारी है कि जो अवल रजी को गुलजारी कनी अन्य बीमारी जो अलावा कन्हाई के बीमारी है कि जो रठी बुझेन अगर जे बीमारी है रठी के जे तंदुरुस्त रहते जे सेहत ठीक रहती तो मुआशरे जो एक मनोरुख प्रायजी वजन रे ताकि असनो मुआशरा जो है प्रायजी बुझी सेहतमंद मुआशरा प्रायजी बुझी जब सेहतमंद मुआशरा बिजले पर तसनी असनी यानी मले के रे एक सेहतमंद कौम एक लजी बुझोन बेसू तो असनी मुल्क से तरक्की थे बुझी तो सजार रजार हुई अनि से साथ साथ बस आखिर जानी रजी बोझम की हेपेटाइटिस एक अहम सियाहतियों मसला खन लेकिन मुनासिब एहतियात वैक्सीनेशन साफ वही महफूज तिबी तरीके और बरवक तश्खी से जरियश अनि से फैलाव थ्योनी काफ़ी हद तक कम थ्यो कि हुकूमत से गा महकमे से गा तालीमी इदारे से गा आम जकोड़क अनि बीमारियों बेसू एक बोईता घाटी बोईता अनि बीमारियों खिलाफ बेसू कुम थ्यो की जरूरत हन ताकि असनो मुआशरा एक सेहतमंद मुआशरा बोई बोझी वातार हुई बे अनि उसूल जब पाबंद बोई अमल थे बोझून सजा रेडार हुई अनि से साथ साथ कि अश अनुशीना प्रोग्राम ओ खेन छुपा फालो मुतिलक बड़ा मिष्टो प्रोग्राम एक गी छो मुठो हाजिर बोन सदड़क दिया सुर इजाजत खुदा यार।